मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच टीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई

0: बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बीटिंग वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में ज्वार की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम ज्वार की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की खेती हम दो मतलब से करते हैं, एक तो अपने खाने के लिए और दूसरा अपने जानवरों के लिए। अपने लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने के लिए इस समय आप ज्वार की बुआई कर सकते हैं। आइए पहले अनाज उत्पादन के लिए और फिर इसके बाद चारे के लिए इसकी उन्नतशील ढंग से खेती के बारे में चर्चा करते हैं। दाना प्राप्त करने के लिए ज्वार की बुआई करने का सही समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है। अतः आप खेत तैयार करके और सही समय पर बुआई करें। इसके लिए वही भूमि उपयुक्त होती है जो बलुई या दोमट किस्म की हो, तथा यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि खेत में ज़्यादा पानी न लगने पाए, यानी फालतू पानी के निकासी की व्यवस्था हो। खेत के चुनाव के बाद उसकी एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं। खेत में अगर दीमक लगने की संभावना हो तो 25 से 30 किलोग्राम लिंडेन चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में भलीभांति मिला देना चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह हैं CSB13, मऊ टाइप 1, मऊ टाइप 2, वर्षा, CSH16, CSH9 और CSH14 इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि अगर एक एकड़ खेत में बुआई करना है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज लगेगा। बीज का जमाव अच्छा हो और उसमें कंडुआ रोग न लगने पाए, इसके लिए बीजोपचार करते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए थीरम दवा लेते हैं। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी अगर 5 किलोग्राम बीज है तो लगभग 12.5 ग्राम दवा लगेगी। बुआई हल के पीछे कुणों में करनी चाहिए तथा एक कुण से दूसरे कुण की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी बोते समय ही करते हैं। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जाँच के बाद मालूम हो जाती है। अगर मिट्टी की जाँच न करवा सकें तो संकर प्रजातियों के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में कुंड में डालकर फिर बीज डालते जाते हैं। अगर एक एकड़ खेत है तो 32 किलोग्राम नत्रजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में। कहने का मतलब ये कि 64 किलोग्राम यूरिया, 96 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खेत में कुंड में डालकर और फिर पीछे पीछे बीज बोते जाते हैं। यूरिया की इतनी ही मात्रा को बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। ज्वार अक्सर अरहर के साथ मिलाकर भी बोते हैं, लेकिन इससे उपज अच्छी नहीं मिल पाती। अगर दोनों को बोना है तो अरहर की 2 लाइनों के बीच में ज्वार की 1 लाइन बोना चाहिए। आइए अब कुछ चर्चा चारे के लिए ज्वार की खेती के बारे में करते हैं। चारे के लिए ज्वार की जो उन्नतशील किस्में हैं वह हैं मीठी ज्वार PC6, UP चरी नंबर 1, UP चरी नंबर 2। इनकी बुआई जून माह से लेकर जुलाई माह तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसमें 80 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर।

0: कहने का मतलब ये कि 32 किलोग्राम नत्रजन तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्वार की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में ज्वार की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। आइए सुने भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। माँ, हम आपके बालक समान हैं, हम अज्ञानी हैं और अबोध हैं, हमारा कल्याण करो, हमें अपना आशीष दो, हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो और हमारे अपराधों को क्षमा करो।

भगवान शिव इस चराचर जगत के पालनहार हैं, वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आइए चलें शिवालय अपने प्रभु भगवान शिव की आराधना करने, उनकी पूजा अर्चना करने, उनका आशीष प्राप्त करने।

भगवान शिव भक्तों के पालनहार हैं। भक्त का एकमात्र सहारा उसके इष्ट होते हैं। भगवान हमें सद्बुद्धि देते हैं और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वो सत्य के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने बाबला मेहता, तुलसी कुमार और महेंद्र कपूर के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रही हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 136वीं कड़ी।

अब मुकदमे की सुनवाई को मुलतवी रखने की जरूरत न रही थी, किंतु चूंकि मजिस्ट्रेट और वकील ने इस परिणाम की आशा नहीं की थी, इसलिए सजा सुनाने के लिए अदालत ने केस मुलतवी रखा। मैंने वायसराय को सारी स्थिति तार द्वारा सूचित कर दी थी, पटना भी तार भेजा था। भारत भूषण पंडित मालवी जी आदि को भी वस्तु स्थिति की जानकारी तार से भेज दी थी। सजा सुनाने के लिए कोर्ट में जाने का समय हुआ, उससे कुछ पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेट का हुक्म आया कि गवर्नर साहब की आज्ञा से मुकदमा वापस ले लिया गया है। साथ ही कलेक्टर का पत्र मिला कि मुझे जो जांच करनी हो मैं करूं और उसमें अधिकारियों की ओर से जो मदद जरूरी हो सो मांग लूं। ऐसे तात्कालिक और शुभ परिणाम की आशा हम में से किसी ने नहीं रखी थी। मैं कलेक्टर मिस्टर हैंकॉक से मिला। मुझे वो स्वयं भला और न्याय करने में तत्पर जान पड़ा। उसने कहा कि आपको जो कागज पत्र या कुछ और देखना हो सो आप मांग लें और मुझसे जब भी मिलना चाहें मिल लिया करें। दूसरी ओर सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पदार्थ पाठ मिला। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण को तथा मेरी जांच को अनपेक्षित रीति से प्रसिद्धि मिल गई। अपनी जांच के लिए मुझे सरकार की ओर से तटस्थता की तो आवश्यकता थी, परंतु समाचार पत्रों की चर्चा की और उनके संवाददाताओं की आवश्यकता नहीं थी। यही नहीं, उनकी आवश्यकता से अधिक टीकाओं से और जांच लंबी चौड़ी रिपोर्टों से उसके हानि होने का भय था। इसलिए मैंने खास खास अखबारों के संपादकों से प्रार्थना की कि वे रिपोर्टरों को भेजने का खर्च न उठाएं, जितना छपाने की जरूरत होगी उतना मैं स्वयं भेजता रहूंगा और उन्हें खबर देता रहूंगा।

हूं का। मैं ये समझता था कि नील है खूब चिढ़े हुए हैं। मैं ये भी समझता था कि अधिकारी भी मन में खुश न होंगे, अखबारों में सच्ची झूठी खबरों के छपने से वे और अधिक चिढ़ेंगे। उनके चिढ़ का प्रभाव मुझ पर जो कुछ नहीं पड़ेगा, पर गरीब डरपोक रैयत पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा होने से जो सच्ची स्थिति मैं जानना चाहता हूं उसमें बाधा पड़ेगी। नीलहों की तरफ से विषैला आंदोलन शुरू हो चुका था। उनकी ओर से अखबारों में मेरे और साथियों के बारे में खूब झूठा प्रचार हुआ, किंतु मेरे अत्यंत सावधान रहने से बारीक बातों में भी सत्य पर दृढ़ रहने की आदत के कारण उनके तीर व्यर्थ गए। नीलहों ने ब्रजकिशोर बाबू की अनेक प्रकार से निंदा करने में जरा भी कसर नहीं रखी, पर ज्यों ज्यों वे उनकी निंदा करते गए त्यों त्यों ब्रजकिशोर बाबू की प्रतिष्ठा और बढ़ती गई। ऐसी नाजुक स्थिति में मैंने रिपोर्टरों को आने के लिए जरा भी प्रोत्साहित नहीं किया, न नेताओं को बुलाया। मालवीय जी ने मुझे कहला भेजा था कि जब जरूरत समझे मुझे बुला लें, मैं आने को तैयार हूं। उन्हें भी मैंने तकलीफ नहीं दी। मैंने इस लड़ाई को कभी राजनीतिक रूप धारण नहीं करने दिया। जो कुछ होता था उसकी प्रासंगिक रिपोर्ट मैं मुख्य मुख्य समाचार पत्रों को भेज दिया करता था। राजनीतिक काम पढ़ने के लिए यानी करने के लिए जहां राजनीति की गुंजाइश न हो वहां उसे राजनीतिक स्वरूप देने से पांडे को दोनों दिन से जाना पड़ता है। इस प्रकार विषय का स्थानांतरण न करने से दोनों सुधरते हैं। बहुत बार के अनुभव से मैं ये सब देख चुका था कि चंपारण की लड़ाई ये सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध लोक सेवा में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रीति से राजनीति मौजूद रहती ही है।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे रवींद्र साठे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे विदुषी कला रामनाथ का वॉयलिन वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 और दिन 12:30 पर कलाकार होंगी पूजा बसाक। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 10:00। खेल पत्रिका सुनिए आज रात 10:00। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव खेती में के अंतर्गत इंद्रसेन सिंह से राजेश नारायण की बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे अमलेश कुमार पांडे का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। आज का सिने दर्पण आधारित होगा अभिनेता विनोद खन्ना पर। बहने अपना गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगी दिन 1:15 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:00, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 पर रसमाधुरी में। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिए दिन 2:30 पर। प्रस्तुति पूजा सिंह की होगी। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11:00। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 7:00। श्रोताओं हम आपको याद दिलाएं क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 10:00। खेल पत्रिका सुनिएगा आज रात 10:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 और दिन 12:30 पर कलाकार होंगी पूजा बसाक। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे विदुषी कला रामनाथ का वॉयलिन वादन।

कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव खेती में के अंतर्गत इंद्रसेन सिंह से राजेश नारायण की बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे अमलेश कुमार पांडे का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। आज का सिने दर्पण आधारित होगा अभिनेता विनोद खन्ना पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। बीटिंग वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं संस्कृत में समाचार। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: PM आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ. भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ. उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ. आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते. उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति. अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति. लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिमबंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति. अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते. पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति. कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति. कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य

0: राज्यस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेष् केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकै पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
1: हाँ जी, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ मॉर्निंग का नंबर वन शो, गुड मॉर्निंग बनारस। तो दोस्तों, सुबह सुबह जब आप आंखें खोलते हो तो सबसे पहले क्या सुनाई देता है? अलार्म की टाए टाए, पड़ोस वाली आंटी की किच किच, या फिर सड़क पर गाड़ियों का पोपो? ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे कानों के खिलाफ कोई साजिश रख रखी है ना? सही कहा ना मैंने? लेकिन एक बड़ा मस्त फीचर है हेडफोन्स में, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बटन दबाओ और बाहर की सारी बकवास गायब, सिर्फ आप और आपका पसंदीदा गाना। पर बनारस, कभी सोचा है, काश ऐसा ही एक बटन हमारी असली जिंदगी में भी होता, एक ऐसा लाइफ नॉइस कैंसिलेशन बटन जिसे दबाते ही जिंदगी के सारे फालतू शोर शराबे फुल स्टॉप पर लग जाते। जी हाँ, सोचिए, हमारी जिंदगी में असली शोर सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न का नहीं है, असली शोर तो वो है जो लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं। शर्मा जी का लड़का देखो कहाँ पहुंच गया, ये शोर। अरे, तुम्हारी उम्र हो गई, अब तक सेटल नहीं हुए, ये भी शोर है। और वो सोशल मीडिया का शोर जहाँ हर कोई अपनी फेक खुशियां दिखा रहा है और हम अपनी असली जिंदगी को उनसे कंपेयर करके दुखी हो रहे हैं। हम इस बाहरी शोर को सुनते सुनते अपने अंदर की आवाज, अपने दिल की धड़कन को सुनना भूल गए हैं। और जब तक अंदर शांति नहीं होगी, तब तक खुशहाली आ ही नहीं सकती। तो चलिए, आज मिलकर अपनी जिंदगी में नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, फालतू ओपिनियंस को कर दीजिए म्यूट। यानी लोग क्या कहेंगे ये सोचना लोगों का काम है, आप काम करिए अपना मुस्कुरा करके और आगे बढ़ते जाइए। देखिए, तुलना का वॉल्यूम है ना, उसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी है। तो अपनी फिल्म के हीरो खुद बनिए, दूसरों की रील देखकर अपनी रियल लाइफ को खराब मत करिए, उसे कम मत समझिए। और सेलेक्टिव लिसनिंग अपनाइए, यानी कान भगवान ने दिए हैं।

तो अच्छी बातें अंदर जाने दीजिए और फालतू बातों को ना नो एंट्री का बोर्ड दिखा करके रफा दफा कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे दूसरों के शोर में खोने मत दीजिए। बटन दबाइए, मुस्कुराइए और अपने दिल की धुन पर नाचिए। चलिए इसी बात पर आपको सुनवाती हूँ एक ऐसा सॉन्ग जिसे सुनकर आप भी एकदम शांत और खुश हो जाएंगे और ये कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सुन लेते हैं

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ। और अब कार्यक्रम में समय हो गया है दोस्तों ये जानने का कि क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। दोस्तों काशी में बन रही नई बिल्डिंग के ईंट ईंट में शिव का वास होगा। जी हां, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद काशी में अगले साल तक शिवलिंग की डिजाइन वाले तीन और भवन तैयार हो जाएंगे। इनमें भेलूपुर जलकर परिसर, शिवलिंग थीम पार्क, कमिश्नरी कंपाउंड में एकीकृत मंडली कार्यालय और नगर निगम सदन भवन शामिल है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर त्रिशूल, डमरू, बेलपत्र के आकार को केंद्र में रखकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गंजारी स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। शिवलिंग और बेलपत्र की झलक यहां दिख रही है। यही नहीं, रोपवे में भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर की थीम है। अब 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाला नगर निगम सदन भवन शिवलिंग और मंदिर थीम पर बनेगा। इसकी लागत 97 करोड़ रुपए लगभग है। यह 7 मंजिला भवन होगा जिसे गंगा और काशी की थीम पर बनाया जाएगा। इसमें मुख्य भवन शिवलिंग की आकृति का होगा जिससे काशी में आने का एहसास होगा। इसी बिल्डिंग में नगर निगम के सभी कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। अगली खबर ये है बनारस की। गुरुवार सुबह 9:30 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET शुरू हो गई। 4 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए जिले में 68 केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिनों में 1,60,369 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए ट्रिपल लेयर निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। रिटायर IAS और IPS अधिकारियों समेत पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। गुरुवार और शुक्रवार को परीक्षा 2 पालियों में होगी जबकि शनिवार को 1 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बनारस पौधारोपण महाभियान 2026 के अंतर्गत काशी में लंगड़ा आम सहेजने का सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रयास करेगा। जी हां, इसी क्रम में जिले के 394 अमृत सरोवरों पर बनारस लंगड़ा आम जो GI रजिस्टर्ड है उसके 8,000 पौधे लगाए जाएंगे और इन सरोवरों के किनारे लंगड़ा आम की बगिया बनाई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि पौधरोपण महाभियान के तहत प्रत्येक चयनित अमृत सरोवर पर औसतन 20 पौधे रोपे जाएंगे जिनकी देखभाल अमृत सखियां करेंगी। CDO ने बताया अमृत सखियों को इन पौधों के विशेष संरक्षण और देखभाल के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे पौधों का बेहतर संरक्षण हो सके। CDO ने बताया कि इस अभियान से पर्यावरण

0: पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बनारसी लगड़ा आम के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। वर्षों से काशी की पहचान रहे इस विशेष आम की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिससे इसकी मूल प्रजाति पर संकट गहराता जा रहा है। CDO ने बताया, अमृत सरोवर के किनारे बनारसी लगड़ा आम के पौधों को लगाकर काशी के इस विरासत को संजीवनी दी जाएगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्थानीय जैविक विरासत के संवर्धन को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। जन सहभागिता से पौधों का पूरा संरक्षण और देखभाल की जाएगी, जिससे आने वाले वर्षों में अमृत सरोवर केवल एक जल संरक्षण के केंद्र ही नहीं बल्कि बनारसी लगड़ा आम की नई पहचान के रूप में भी विकसित हो सकेंगे। सो बनारस, ये तो बात हो गई, क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में। ১৯৪১ में आज ही के दिन मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1897 में भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 2020 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ था। 1996 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। बनारस, आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ये हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना है। यह वैश्विक पहल पहली बार 2008 में स्पेन के कैटालोनिया में शुरू की गई थी और इसे जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा 2009 में औपचारिक रूप दिया गया था। एक प्लास्टिक बैग का उपयोग औसतन मात्र 12 से 20 मिनट के लिए किया जाता है, लेकिन इसे प्रकृति में पूरी तरह विघटित होने में लगभग 100 से 500 साल तक लग जाते हैं। यह पर्यावरण, मिट्टी और समुद्री जीवों के लिए बेहद घातक है। इसके बारे में हमें और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के गेस्ट। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा, स्वच्छता दूत, जो कि पिछले 12 वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा व वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 जुलाई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाती है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और कपड़े तथा जूट के झोले, जो कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता और सैकड़ों सालों तक वायु, धरती और पानी को दूषित करता है। दोस्तों, मानव हो, पशु हो या फिर समुद्री जीव, सबके जीवन के लिए प्लास्टिक थैलियां जानलेवा है। कैंसर के बड़े कारणों में से एक प्लास्टिक थैले हैं। आजकल दूध, चाय और खाने के सामान धड़ल्ले से प्लास्टिक थैलों में पैक करके दे दिया जाता है और हम बड़ी खुशी खुशी उसको अपने घर भी लाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक थैलों में थैलेट और BPA जैसे खतरनाक रसायन पाए जाते हैं, जो कि खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे रक्त कोशिकाओं को विकृत कर कैंसर पैदा करने में सक्षम है। दोस्तों, इसीलिए नगर निगम और तमाम सामाजिक संस्थाओं से मिलकर के 6,000 से ज्यादा पुराने कपड़े के झोलों को लोगों के बीच में वितरित किया है और लोगों को जागरूक किया है कि किस प्रकार से प्लास्टिक थैले हानिकारक हैं और एक कपड़े का झोला कितना जीवन बचा सकता है। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमें जीवन जागरूकता के साथ जीना चाहिए। आइए आज हम प्रण लें कि आज से प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल त्याग कर पर्यावरण अनुकूल थैलों का ही इस्तेमाल करेंगे और पर्यावरण के सच्चे मित्र बनेंगे और पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। इसी के साथ आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
0: सो बनारस, आज की बात कर ली, बीते कल की बात कर ली और आज के स्पेशल डे की भी बात हो गई। अब वो सेगमेंट आता है जिसका रहता है आपको इंतजार।
2: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, हमारी काशी की मिट्टी में ज्ञान की खुशबू तो है ही, लेकिन यहाँ की हवाओं में सात सुर भी बहते हैं।

0: जी हाँ, यहाँ जब सुबह गंगा मैया की आरती होती है या शाम को घाटों पर संगीत की महफिल सजती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ठहर कर बाबा विश्वनाथ की आराधना कर रही हो। और जब बात काशी के संगीत की हो तो सरोद के उन जादुई तारों का जिक्र अपने आप आ जाता है जिन्होंने सात समंदर पार भी बनारस का परचम लहराया है। जी हाँ, आज काशी रत्न में हम बेहद आदर के साथ बात कर रहे हैं बनारस घराने के गौरव और महान सरोद वादक पंडित विकास महाराज जी की। बनारस पंडित विकास महाराज जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं है, वे काशी की उस समृद्ध सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं जहां साहित्य और संगीत एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। बनारस घराने की 14वीं पीढ़ी के इस प्रतिभावान कलाकार ने सरोद वादन को एक नया आयाम दिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? उन्होंने सिर्फ शास्त्रीय रागों को ही नहीं साधा, बल्कि काशी के महान संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के भजनों और उनके साहित्य को अपने सरोज की गूंज से जोड़ दिया। जब उनके सरोद के तारों पर कबीर की साखियां या निर्गुण धुनें थिरकती हैं, तो सुनने वाले की आत्मा सीधे ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर यह साबित किया कि बनारस का संगीत सरहदों का मोहताज नहीं है। पंडित विकास महाराज जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ इंडो जर्मन और फ्यूजन म्यूजिक के अद्भुत प्रयोग किए, लेकिन उनके पैर हमेशा 80 और दशाश्वमेध घाट की इस पवित्र मिट्टी से ही जुड़े रहे। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। वे आज की युवा पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आप पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकते हैं। तो आज सरोद के इस जादूगर और कला मनीषी पंडित विकास महाराज जी को हमारा शत शत नमन। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
2: हाँ जी, सुबह की धूप अब घाट की सीढ़ियों से उतरकर बनारस की गलियों में फैल चुकी है और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपकी इस रेडियो दोस्त पूजा का आपसे विदा लेने का। दोस्तों, आज का पूरा दिन आपके सामने एक कोरे कागज की तरह खुला है। बनारसी मिजाज अपनाइए, चिंताओं को गंगा जी में प्रवाहित करिए और पूरे दिल से मुस्कुराकर दिन की शुरुआत कीजिए। चलते चलते आज की एक बेहद खूबसूरत बात आपके दिल के नाम सौंपे जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको बनारस और जिंदगी दोनों से मोहब्बत हो जाएगी। आई नो मोहब्बत है, लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से। बनारस कोई शहर नहीं जिसे नक्शे पर ढूंढा जाए, ये तो एक ठहरने का नाम है जहां आकर भागती हुई जिंदगी भी सुकून का कुल्हड़ थाम लेती है। तो बस बनारस, जिंदगी के इस भागदौड़ में थोड़ा सा ठहराव लाइए, अपनों के साथ बैठिए और चाय की चुस्की के साथ याद रखिए कि हर मुश्किल का हल बेहद आसान है। आखिर हमारे साथ महादेव जो है। कल फिर सुबह मुलाकात होगी, इसी समय इसी जगह, कुछ नए किस्सों के साथ, कड़क चाय के साथ और आपकी नई दूसरी आरजे दोस्त के साथ। फिलहाल यही बात मैं आपसे कहूंगी कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप और खुशियां बांट पाएंगे। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, ठीक 7:20 पर।

0: नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटा

0: गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VVG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रूपये से बढ़ाकर 3,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
3: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर SIT की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। ADA के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
2: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
5: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10%

0: की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: दिन भारत बनाए। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाए। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की राष्ट्रीय के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा योजना अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित राज्यसभा बने।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबी

जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कला रामनाथ का वॉयलिन पर बजाया राग तोड़ी। आपके साथ तबला संगति कुमार लाल मिश्रा की है, तो आइए सुने विदुषी कला रामनाथ का वॉयलिन पर बजाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने विदुषी कला रामनाथ का वॉयलिन पर बजाया राग तोड़ी सुना। आपके साथ तबला संगति कुमार लाल मिश्रा की थी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन।

0: संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी सोलहवें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़

करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इगलिवी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर

0: लिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमौली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीरे आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा दाइश लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीरे आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल्काहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीरे आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इकतसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इकतसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इकतसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली सलामती और इकतसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल्काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इकतसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे जिनमें सेमी कंडक्टर अहम मादनियात इन्फॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और

0: उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कास्ट की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क्यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निजाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रूशनास कराना है। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज के रियासती वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे, जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है, जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
2: बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियत जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरअसना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज से पहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے

0: इस किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: दोस्तों, मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत परांजपे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है मुग़ल-ए-आज़म फिल्म का। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सुरीले और भव्य गानों में से एक है। ये गीत शीश महल में फिल्माया गया था और उस वक्त इसके फिल्मांकन के लिए लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ और अभिनेत्री मधुबाला के शानदार अभिनय ने इस गीत को चिरकाल तक सुना जाने वाला गीत बना दिया। तो आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुग़ल-ए-आज़म का ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीत दिया है नौशाद ने।

Thank you.

अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। सन 1960 में रिलीज्ड इस फिल्म का ये दर्द भरा गीत सुनकर आप भी गमगीन हो जाएंगे। ये दर्द भरा गीत फिल्माया गया था फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी पर। यह धुन मूल रूप से विदेशी संगीत पर आधारित थी, इससे प्रेरित थी, जो कि मूल रूप से पश्चिमी क्लासिक वॉल्ट्स पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए ये धुन बनाई शंकर जयकिशन ने और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। इस गीत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये गीत पहले इस फिल्म में था ही नहीं, बल्कि किसी अन्य फिल्म के लिए बनाया गया था और वो फिल्म थी आधी रात के बाद। लेकिन किन्हीं कारणों से ये गीत इस फिल्म में शामिल नहीं किया जा सका था और उसके बाद ये दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का हिस्सा बना।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नगमे आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वही हमारा साथ। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
2: हवा। ये गीत हमने लिया है फिल्म आवारा से। ये गीत 1951 में रिलीज्ड फिल्म आवारा में फिल्म अभिनेता राज कपूर पर फिल्माया गया था। इस फिल्म में राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये गीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ तत्कालीन सोवियत संघ और अब के रूस देश में। ये रूस देश के साथ साथ चीन में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। वहां आज भी इस धुन को गुनगुनाया जाता है। इस गीत को गाया था जादुई आवाज वाले पार्श्व गायक मुकेश ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।

श्री 420 के इस गीत ने भी राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। ये गीत भी देश विदेश में खासा लोकप्रिय हुआ था। इस गीत की बोल लिखी थी शैलेंद्र ने और इसे सुरों में पिरोया था संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: ये गीत सन 1979 में रिलीज्ड फिल्म गोलमाल का है। इसे गाया है आरडी बर्मन और सपन चक्रवर्ती ने। गीत के बोल लिखे हैं गीतकार गुलजार ने। इस फिल्म के लगभग सभी गीत पार्श्व गायक किशोर कुमार ने ही गाए थे, लेकिन विशेष रूप से ये गीत गाया आरडी बर्मन और सपन चक्रवर्ती ने। उनकी इस जुगलबंदी ने इस गीत को एक नई पहचान दी। ये गीत आज भी लोगों की जुबां पर है।
1: अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। SPCT व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
3: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट हैं और UP CNDS इसमें कार्यदायी संस्था है तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
1: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को DM अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव गुम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जून में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता Under-12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी की अध्यक्ष में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में

0: यूपी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुरप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त यूपीएससी कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित उर बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने की बरामद किए।
1: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण

0: 39 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जन प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जन प्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 3,11,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। साहिल साहनी पुत्र ललन प्रसाद साहनी निवासी ग्राम सूजाबाद पोस्ट कुष्ठ सेवा आश्रम नई बस्ती सूचना

0: शाहबाद पड़ाव वाराणसी से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री पूनम साहनी दिनांक 22 मार्च 2025 से कहीं गायब हैं। पूनम साहनी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 28 वर्ष, कद 145 सेंटीमीटर, इनका डील डोल सामान्य है, रंग सांवला है और इन्होंने गहरे गुलाबी रंग का सूट सलवार पहना है। इनके पाए जाने की संभावना कैंट रेलवे स्टेशन और रामनगर बस स्टैंड के आसपास है। पूनम साहनी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर वाराणसी से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम पूनम साहनी है। सोनी पत्नी मोहन कोल ने कोइलरिया थाना कर्मा जनपद सोनभद्र से हमें सूचना दी है कि उनके पति मोहन कोल 9 फरवरी 2025 को सुबह 5 बजे से कहीं गुमशुदा हैं। मोहन कोल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गोरा है, चेहरा अंडाकार है और एकहरा बदन है। इन्होंने काला पैंट और सफेद शर्ट पहना है। मोहन कोल के बारे में सूचना मिलने पर कृपया थाना कर्मा जनपद सोनभद्र से संपर्क करें। पारसनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम यादव ने ईश्वरगंगी थाना जैतपुरा से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कशिश यादव दिनांक 22 जनवरी 2026 सुबह 4 बजे से कहीं गुमशुदा है। कशिश यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से, इनकी उम्र 17 वर्ष है और ये दिनांक 22 जनवरी 2026 सुबह 4 बजे से गुमशुदा हैं। कशिश यादव पुत्री श्री पारसनाथ यादव के बारे में सूचना मिलने पर कृपया थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम कशिश यादव है। शहाबुद्दीन पुत्र स्वर्गीय ताज मोहम्मद ने ग्राम खुटहा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनका पुत्र अबू बैश दिनांक 20 मार्च 2026 दिन 12 बजे से कहीं गुमशुदा है। अबू बैश के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, इन्होंने कुर्ता और लोअर पहना है। वे अपने साथ एटीएम और अपना आधार कार्ड भी ले गए हैं। अबू बैश के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम अबू बैश है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मना ही
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, हमारे मेहमान के एक नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। सामीन, हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान में शिरकत करने वाली मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा हैं। शबीना साहिबा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना अदीब।
1: मोहतरमा, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके शेरी सफर का आगाज कैसे हुआ?
2: हमारे कानपुर का एक बड़ा तारीखी कस्बा मकनपुर है।
1: जी जी जी।
2: और उस सरजमीन में एक बहुत बड़ी अजीम बुजुर्ग की दरगाह है, सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार। उस कस्बे की ये खासियत है कि मैं समझती हूँ कि वहाँ का बच्चा बच्चा शायर है, शायरी वहाँ के पानी में है। और उस कस्बे से मिला हुआ एक छोटा सा गांव है जिसको रौगांव कहते हैं। वहाँ से निकल कर आना मेरे लिए बहुत दुश्वार वाला सफर था।
1: जी।
2: तो हमारे यहाँ की मैं बात बताऊँ आपको कि शुरुआती जो मेरा दौर गुजरा है, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम तो यूं ख्वातीन की जो महफिल होती है मिलाद शरीफ, उसमें कभी कभी शिरकत करते थे। और उसके बाद एक जुलूस में मेरे मामू जान ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ पढ़ोगी? तो मुझे पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, अब माइक में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ पढ़िए, कुछ एक नात सुनाइए। जब मैंने नात शरीफ को पढ़ा और मेरी आवाज वहां के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत उस कस्बे की मकनपुर शरीफ की, अदीब मकनपुरी साहब, तो उन्होंने एक साहब को भेजा कि ये रात में जो इस बच्ची ने जो पढ़ रही थी वो कौन बच्ची है, कहाँ से उसका ताल्लुक है, उसको बुला कर लाओ। उन्होंने मुझे बुलाया और वो अपने घर लेकर गए, उस्ताद अदीब साहब से मिलवाया। तो अदीब साहब ने बड़ी मुझे दुआएं दी, बड़ी मेरी तारीफ की और फिर मुझसे कहा कि आप मेरा कलाम पढ़ेंगी? उस वक्त जाहिर सी बात है मेरी उम्र जो थी वो 8-9 साल की उम्र थी, और चूंकि पढ़ने का शौक था ही, तो मैंने बिल्कुल मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। तो वो शुरुआती दौर मेरा ऐसे ही गुजरा। फिर वहाँ की नशिस्तों में मैंने शिरकत की और धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, तो मैं मदऊ तो नहीं थी उस मुशायरे में, एक मुशायरा हुआ उन्नाव में। उन्नाव में मुझे जब उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब लेकर गए, मैंने वहाँ पर जो कलाम पढ़ा, तो कैफी आजमी साहब मौजूद थे उस मुशायरे में। तो कैफी साहब ने मुझे बेपनाह दुआएं दी, चूंकि मुशायरे की तो ये तहजीब नहीं है कि भाई पैसे दिए जाएं, तो उन्होंने मुझे बड़ी खामोशी से बुलाया और मुझे हाथ में चुपचाप पैसे दिए, और 100 का नोट था, और वो 100 का नोट मुझे आज तक मेरे पास चल रहा है, उसी से मैं सफर कर रही हूँ।
1: मोहतरमा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इब्तदाई तालीम या उसकी आखिरी मंजिल क्या और उसके बाद?
2: हाँ बिल्कुल, हमारे कस्बे का फेयर कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। और उस दरमियान ये जरूर हुआ कि मुझे मुशायरे छोड़ने पड़े, लेकिन मुझे इतना शौक था और खानदान वालों की जो एक पाबंदियां थी, को मैं बताऊं कि जब शुरुआती सफर हमारा वहां से शुरू होता था मकनपुर से, तो मैं इक्के से बैठ कर किसी तरह से अरौल स्टेशन एक पड़ता है वहाँ आती थी, फिर वहाँ से बस या ट्रेन मिलती थी।
1: जी जी जी।
2: तब जाकर हम उस मंजिल तक पहुँच पाते थे जिस मंजिल पे मेरा मुशायरा जहाँ पर होता था उस शहर में पहुँचना होता
1: जी
2: था
1: जी
2: मेरा
1: जी।
2: इस स्कूल से मुझे इतनी परमिशन थी कि मैं महीने दो महीने में कभी शायद हम सफर कर ले मुशायरे के लिए, लेकिन उसमें भी हम खानदान वालों की भी डांट खाते थे और स्कूल की भी डांट खाते थे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके वालिद मोहतरम खुद एक बहुत बड़े शायर थे, चौधरी इतरत हुसैन साहब, तो अब वो हमारे अदीब मकनपुरी साहब के भी उस्ताद थे। तो वो मुझे ये परमिशन जरूर देते थे कि नहीं नहीं, इस बच्ची का शौक जो है उसको मुझे नहीं मारना, इसको निकलने दीजिए घर से बाहर, और इसमें तो अपने स्कूल का भी नाम होगा। लेकिन बहुत मुश्किल था फिर भी मेरे लिए।
1: जाहिर सी बात है, मोहतरमा आपके शेरी सफर की बात हो और उसमें एक गजल बिलखसूस एक शेर उसका जिक्र ना आए, मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। आप समझ गए होंगी?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: वो है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मोहतरमा, इस शेर को भी पढ़े, इस गजल को भी पढ़े और इसके पस मंजर पर जरूर रोशनी डालें जो हमारे सामने सुनना चाहते।
2: ठीक है, पहले मैं शेर ही सुनाती हूँ। खामोश

0: वाह वाह
1: खामोश लब हैं अभी ना आए

0: नहीं नहीं है। वाह
1: नई
0: वाह वाह वाह वाह,
1: खामोश लब हैं। और ये शेर
0: बिल्कुल जिसकी
1: जिसका आप इंतजार कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और लोग
0: मेरे
1: भी
0: सारे
1: इंतजार करते
0: सामने
1: हैं,
0: इंतजार कर रहे हैं।
1: जो खा

0: नहीं
1: नई
0: वाह
1: है,
0: वाह वाह वाह वाह
1: खामोश लब हैं। और इस गजल का मकता जो शायद आपने मालूम नहीं सुना
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: मैं
1: नहीं सुना,
0: चाहे तो मैं
1: लेकिन
0: कहने ही वाला
1: मैं
0: था कि
1: पेश
0: आप
1: करना
0: मकता
1: चाहती
0: जरूर
1: हूँ
0: पढ़ें
1: जी
0: इसका।
1: बिल्कुल, कि अभी

0: क्या बात है, क्या खूबसूरत लगता है भाई।
1: मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है,
0: वाह वाह वाह वाह। अच्छा एक चीज और, मैंने ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक मुशायरा दुबई का, शायद आपका मुशायरा था, आपने इसके बाद वाला शेर पढ़ा था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आंखें बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये
2: सारे लोग आगे की कुर्सी
0: खाली करके, भैया हम नहीं है ऐसा, उसके बारे में।
2: अब मैं एक वाक्य और सुनाती हूँ। जब ये वीडियो क्लिप लोगों तक पहुंची तो एक उदयपुर का एक सिंघानिया परिवार है जिनको शायरी से कोई लेना देना नहीं, कोई शौक नहीं, और जब इस गजल को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में बाकायदा एक फंक्शन रखा और ये कहा कि भाई हमें शबीना अदीब को बुलाना है। तो एक भाटी साहब है वहाँ पर, गजल सिंगर है, जाहिर सी बात है मेरा नंबर तलाश करना है वो, तो किसी दराय से उन्होंने मेरा नंबर तलाश किया। फिर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगे एक भाटी साहब है वो अपने बेटे की शादी में एक फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें आपका सोलो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं ऐसा करो, इसमें एक दो शोरा को और मधु कर लो तो एक अच्छी सी नशिस्त हो जाएगी, महफिल हो जाएगी शायरी की। जब मैंने ये शेर पढ़ा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सब में, अब जाहिर सी बात है उन्होंने एक मजाक भी किया थोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई वो होता है ना शादी के माहौल में एक जो एक मजाक का जो एक, एक मतलब उस तरह का माहौल होता है, लोग इंजॉय करते हैं खुशी के माहौल में। तो वो जैसे ही मैंने वो शेर पढ़ा तो वो उन्होंने जैसे दुबई का जो क्लिप वायरल हुआ था रेहान सिद्दीकी साहब वाला, तो वो अंदाजे बयां और उनका एक वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ कि वो लोग उसी तरह से नकल करने लगे बाकायदा। तो वो जितने आके एक सफ में लोग बैठे हुए थे वो सारे खड़े होके जाकर पीछे बैठ गए और फिर बोले अब इसको पढ़ते रहिए, आगे के सोफे में कोई नजर नहीं आया। तो जब से ये गजल हमारी मकबूल हुई है तो मैंने ऐसे मनाजिर बहुत सी महफिलों में देखे।
0: ये जो आपने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, इसका पस मंजर अभी आप बताना चाह रहे थे तो पस मंजर जरूर बताएं आप।
2: हाँ देखिए अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है, हम अपने ही खानदान में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि अपने जब कोई चीज लाते हैं तो वो चीजों की मतलब बाकायदा उसके रेट भी बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसकी ये हैसियत नहीं है कि वो सोफा खरीद पाए, हालांकि ठीक है सब अपने मेहनत से वहां तक पहुंचते हैं लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: शबीना अदीब इस नाम से तो फेमस हो गई, लेकिन ये हकीकी नाम है या आपका तखल्लुस है, इसके बारे में जरूर बताएं।
2: हमारा तखल्लुस भी यही है और हकीकी नाम भी यही है। बचपन का नाम तो बस ऐसे ही था जो घर में साल दो साल तक लिया गया, उसके बाद नाम मेरा एक्चुअल में नाम यही है शबीना, और ये नाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब।

0: मदनपुरी साहब ने रखा।
1: आपकी शायरी की दुनिया फैन है, लेकिन आप खुद किस शायर को पसंद करते हैं, किसका कलाम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है?
0: हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम मोहतरम शुआरा, जैसे फिराक साहब भी हैं, बशीर बद साहब भी हैं, वसीम साहब भी हैं, और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मैंने मजरू साहब के साथ भी मुशायरे पढ़े हैं, मैंने कैब भोपाली साहब के साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, मैंने खुमार साहब और अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब ने तो मुझे खुद एक मुशायरे में मदऊ किया जब उन्होंने मुझे उन्नाव में सुना और मेरे उस्ताद से कहा कि भाई इस बच्ची को फेरिस्त मुकम्मल हो गई है, अदीब साहब तो मैं आपको तो नहीं मदऊ कर पाऊंगा लेकिन आप इस बच्ची को भेज दीजिएगा उस मुशायरे में। आजमगढ़ का मेरी जिंदगी का पहला वो बड़ा मुशायरा था आजमगढ़ का, और उस वक्त मैं शायरा वायरा क्या थी, बस ये है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंची थी तो लोग एक इंतजार में थे कि एक बच्ची जिसको कैफी साहब ने खुद कहा है, तो एक इंतजार था लोगों को कि भाई एक मकनपुर से एक शायरा आई, अब शायरा हो तो दिखाई दे, अब एक 9 साल की बच्ची वो दुबकी हुई बैठी हुई है डरी सी सहमी सी तो वो नजर कैसे आएगी। बहरहाल जब हमने वहां पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का वो एक मुशायरा ऐसा था कि उसने मुझे दुनिया के वो कोने कोने तक पहुंचा दिया। मेरी शादी जौहर कानपुरी साहब से हुई तो मुझे जो एक सपोर्ट मिला, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मैंने अपने शौहर को खुश देखा है और शायद ये उनकी खुशी मुझे यहाँ तक लेकर आई, मैंने जो महसूस किया तो वो मेरी कामयाबी पर इतना खुश होते थे और उन्होंने आज जो मुझे मकबूलियत हासिल है, जो मुझे शोहरत हासिल है और जो मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो भी मैंने सूबे, जो भी मैंने शहर, जो भी मैंने मुल्क देखे हैं, वो शायद मैंने जौहर साहब के सपोर्ट की वजह से देखे।
1: अच्छा, कहा जाता है कि एक ही प्रोफेशन के लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं तो अक्सर रिएक्शन रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप दिखाते कि देखिए आज मैंने ये शेयर मौजू क्या कैसा है तो जौहर साहब क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसमें कुछ और कमी है, ऐसा कौन?
0: हाँ नहीं, ऐसा होता है कि जब हम शेर कहते हैं तो हम सबसे पहले जाहिर सी बात है आज तो मेरे उस्ताद भी वही है तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाते हैं तो वो डांटते भी हैं, फिर हमसे कहते हैं यहाँ पर ये तुमने गलती की है इसको सही करो, तो शायद ये उसी की देन है।
1: कभी आपको भी ऐसा लगा कि नहीं नहीं आपका भी शेर ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा इसमें?
0: हाँ तो मैं उनको भी टोक देती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि नहीं इसमें तो आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी करते हैं आप इससे अच्छा भी कह सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने सही मशवरा दिया, तो वो मेरे मशवरे को भी,
1: ये भी अच्छी बात मशवरे में खैर है। मोहतरमा, शायरी के अलावा आपके शौक और क्या क्या हैं?
0: सिंगिंग का बहुत शौक है, इतना शौक है कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मैंने 1986 में अपने ही शहर कानपुर का एक हिंदी का कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, उसमें रामानंद सागर जी मुझे मिले तो उन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं और ये शायरी वायरी छोड़िए, आप आ जाइए बॉम्बे, मैं आपका पूरा खर्चा, आपको रहने का, आपके फैमिली को पूरा खर्चा दूंगा और आप एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं, बहुत बड़ी फनकारा हैं, आप खुद नहीं समझ पा रही हैं अपने आप को। तो हमने अनसुना सा घर वालों ने कर दिया क्योंकि घर वालों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि भाई इसको इतना शौक है कि ये शायरी की दुनिया में भी आगे निकल जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे शौक था। और सिंगिंग का मुझे अभी तक बहुत शौक है, मुझे बहुत गाने के ऑफर हुए, अभी कुछ साल पहले भी आज जब मेरा बॉम्बे एक मुशायरे में जाना हुआ तो एक कंपनी के एक साहब थे शफी नियाजी साहब, जौहर साहब ने मेरी आवाज सुनवाई, सुन लीजिए एक शायरा है यहाँ आई है बॉम्बे के मुशायरे में, उन्होंने मुझे जैसे ही सुना तो उन्होंने बुला लिया कि आप स्टूडियो लेकर आ जाइए, मैं स्टूडियो में गई तो मैंने फौरन जैसे एक भजन सुनाया था, एक राधा एक मेरा, सोनू निगम की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो सोनू निगम साहब अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आए, कहने लगे अरे ये आवाज तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप ये लीजिए मेरा कार्ड और आप तो बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं, आप क्यों नहीं इसमें ट्राई करती हैं और शायरी भी करती रहिएगा और सिंगिंग भी करती रही, लेकिन हमें उसके लिए क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने कोशिश की भी और मुझे कुछ गाने दिए गए तो शफी नियाजी साहब, उनको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था, वो जब लंदन गए और उसके बाद आए तो उनकी डेथ हो गई, तो जो गाने मुझे मिले थे उन गानों की भी डेथ हो गई मेरे साथ और फिर वो सिंगिंग की भी डेथ हो गई, ये समझ लीजिए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो बहरहाल सिंगिंग का बहुत शौक।
1: एक पुरानी कहावत है कि जब दिल टूटता है तब शायरी निकलती है, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं?
0: ये तो सच है कि हाँ दिल टूटता है तो शायरी निकलती है, अच्छे शेर होते हैं, लेकिन मेरा दिल वैसे अभी टूटा नहीं है, बगैर टूटे हुए मेरी शायरी हो गई, क्योंकि दुनिया के दिल जब टूटे, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों के दिल टूटे, जो उसको मैंने जब महसूस किया तो मैंने उसको पिरोया,
1: वो आपका
0: जरूरी नहीं कि वो खुद की आपकी अपनी बात हो, क्योंकि शायर या शायरा समाज का एक आईना है,
1: जी जी,
0: तो उस आईने में जब आप देखते हैं खुद को भी तो वही लोग आपको नजर आते हैं।
1: तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप शायरा ना होती तो क्या होती?
0: मुझे लगता कि मैं हाउस वाइफ ही होती, क्योंकि जिस कस्बे से मेरा ताल्लुक था, जहाँ पर इतनी पाबंदियां हो कि 15-16 साल की बच्ची पर्दे में निकलती हो, बुरके में निकलती हो, जिस वक्त मेरी 9-10 साल की उम्र थी, उस वक्त जब लोगों ने इतना एहतजाज किया कि नहीं साहब हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं, हमारे यहाँ बच्चियां जो है वो ऐसे नहीं

0: आती है मुशायरे शायरे में। तो फिर मैं आपको मैं बताऊं, शायरी की वजह से मुझे कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। अपना गांव
1: कस्बा छोड़ के,
0: छोड़कर,
1: अपना गांव
0: अपना
1: छोड़ के।
0: कस्बा छोड़ के मैं कानपुर शिफ्ट हुई।
1: जी
0: तो मुझे लगता है मैं हाउस वाइफ ही होती या फिर जॉब कर रही होती, क्योंकि मुझे उस दरमियान मुझे उर्दू टीचिंग की जॉब भी मिल रही
1: ये भी
0: थी
1: बहुत अच्छी
0: और
1: बात है।
0: वो मैंने
1: कुछ
0: नहीं कर पाई
1: मुतबरिक
0: मसरूफियात के
1: अशार
0: बिना पर।
1: हमारे सामेन को।
0: जी मैं चंद शेर एक गजल के पेश करती
1: जी
0: हूँ।
1: अता करे मत।
0: जहाँ

0: वाह, बहुत ही खूब,
1: शुक्रिया कि अब किसी को
0: हमारे बड़े अप्रिशिएट कर रहे
1: किसी
0: हैं।
1: का भी बहुत शुक्रिया, इंतजार नहीं।
0: वाह
1: और ये शेर बतौर खास
0: जी, अता करें मोहतरमा।
1: गजल में फूल नहीं दिल के जख्म टाकूंगी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: शेर देखें
0: जी, अता।

0: दस्तकार
1: क्या बात है कि शायरा हूं मैं, गजल की दस्तकार
0: नहीं,
1: नहीं, बहुत ही खूब।
0: शायरा हूँ गजल की मैं, दस्तकार
1: बहुत
0: नहीं।
1: खूब
0: और ये भी शेर बतौर खास,
1: इशाद।
0: करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों
1: वाह, करेंगे शोर न
0: पर,
1: पटकेंगे सर जमीनों पर।
0: करेंगे

0: बहुत खूब बहुत खूब भाई, वाह।
1: तुम्हारी जीत तो है ये, हमारी हार नहीं।
0: मोहतरमा, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया।
0: सामिन, ये थी हमारी मेहमान खसूसी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जिनसे अभी आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को दें इजाजत। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे। आइए इनसे पहले सुने ये देवी गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अमलेश कुमार पांडे। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, इनके गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी है प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
1: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की

0: मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूड़ियाटम, द एंशियंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar मेलपतूर नारायण भट्टदिरी। कथा संदर्भ दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Madhu. Kiratam, author Melputur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यर कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यर कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Sri Amal Antony. Sri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the P. Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charum geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंट्स फोर लाइट वोकल सॉन्ग्स। द लिरिक्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय श्री रफीक अहमद, द रेनाउंड मलयालम फिल्म लिरिसिस्ट एंड पोएट। The music has been composed by Sri T.S. Radha.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है, वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: इन द कूल फ्रेशनेस ऑफ अ वृश्चिक डॉन, एज नेचर अडॉन्स इटसेल्फ विद न्यू लाइफ, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us too to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K.X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C.N.K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है प्रोग्राम का। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें आपको भेजनी हैं। यानी फरमाइश में फिल्म का नाम जरूर लिखें, एक बार ही संदेश भेजें और वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक अपने संदेश भेज दें ताकि आपके नाम प्रोग्राम में शामिल हो सकें। आज की फिल्में हैं आए दिन बहार के, लोक परलोक, शोर, सूरज, जीवन मृत्यु और खून और पानी। आए दिन बहार के, लोक परलोक, शोर, सूरज, जीवन मृत्यु और खून और पानी। सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक संदेश में एक ही स्थान के 2-3 श्रोताओं के नाम लिखें और एक बार ही संदेश भेजें। हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहें और कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजा करें pkld@varanasi.gmail.com पर। और वो प्रोग्राम प्रसारित होता है रविवार को शाम 7:31 पर। इन दिनों वो प्रोग्राम क्रिकेट मैच के कारण दिन में 1:15 पर प्रसारित होता है, यानी इस रविवार आप दिन में ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। आए दिन बहार के, लोक परलोक, शोर, सूरज, जीवन मृत्यु और खून और पानी। बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं और आइए प्रोग्राम का आरंभ कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। फिल्म है आए दिन बहार की।

जी हाँ श्रोताओ, आपके इंतजार और बेकरारी को हम लोग समझते हैं और आपके नाम बस पढ़ने ही वाले हैं। जिन श्रोताओं ने इस गाने के लिए फरमाइशें भेजी हैं और जिन श्रोताओं ने बाद की फिल्मों के लिए फरमाइशें भेजी हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें और इंतजार करें। ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से ये संदेश आया है सदाशिव थोरात, कविता थोरात और श्रेया थोरात का। गुड्डू कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री, रिया और जिया की फरमाइश आई है पिहरा बाजार झुमरी तलैया से। साथ में है शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके परिवार के सदस्य। मोर टक्का माफी खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल और ज्योति पटेल। जमानिया गाजीपुर से संदेश आया है सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल का। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के हमारे श्रोता हैं अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। मजनू कटिला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। बेरडी से हमें सुन रहे हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा और ऋतिक मल्होत्रा की फरमाइश। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहावकर और निर्मला नहावकर। जनकपुरी सहारनपुर के श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और पर्ल डिकेस्ट्रो। नेहरू चौक पैठण से इस गीत को सुनना चाहा डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती और पूजा ने। छत्रपति संभाजीनगर के श्रोता हैं राजेश साबले, राजदीप राजेश और राशि राजेश। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सुधाकर राजे जाधव और संचित वयाल की फरमाइश कालेगांव जाफराबाद से आई है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा और उनके दोस्त। आशीष कुमार महरे जौनपुर से हमें सुन रहे हैं। गमरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू की फरमाइश पोटिया कला दुर्ग से आई है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी है पिंगावाला चौक गोराया जलंधर के श्रोता। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं। सावतपुर छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू की फरमाइश आई है नागर कोहरा राजनंदगांव। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन की फरमाइश। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद हैं पाकुड़।

खंड के श्रोता। गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आपकी फरमाइश आई। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया की फरमाइश वारंगल से आई हुई है। ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया की फरमाइश। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और कर्ण राहुल साहू। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा और पुष्पराज मरावी। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपानगर से। दादाबाबू रोड गिरिडीह झारखंड के श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद। कार्यक्रम का अगला गीत लोक परलोक फिल्म से बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें।

जी हाँ श्रोताओं, मौसम तो मानसून का है और बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई भी है, लेकिन हमारे बनारस में ठीक ठाक बारिश का इंतजार हम सबको है। इम्कान तो है, यानी हल्की फुल्की बारिश हुई जरूर है कुछ इलाकों में, लेकिन वैसी नहीं जिससे कहा जाए कि बरसात आ गई या फिर मानसून का जो लुत्फ होता है यानी गर्मी के बाद राहत का एहसास, उसका तो इंतजार है अभी। और अब आपको इंतजार नहीं करना है, आपकी फरमाइशें हम बता रहे हैं इस गीत के लिए जो आपने सुना लोक परलोक फिल्म से। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास मानिकपुरी हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से। खरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। गनगोला दातागंज ये जगह का नाम है, वहां से हैं इशरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम और शाहबाज खान। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज की फरमाइश सीतामढ़ी महसोल बिहार से। सुपाही गांव से हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती और प्रकाश ताती। मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू और सुरेश। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू की फरमाइश शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आई हुई है। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी और मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा बनारस के हमारे श्रोता। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का नाम शामिल हो रहा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, इब्राहिम और सद्दाम की फरमाइश कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से आई है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से इस गीत को सुनना चाहा, नानालाम से, मीनालाम से, तेजसलाम से और जयलाम से ले। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। छत्रपति शिवाजी खंडवा से राजेश सेन, मनोज हिरवे की फरमाइश। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भगेलू यादव और राम समुजी यादव हैं वलीदपुर मढ़हा मऊ उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हैं लदावली मुरादाबाद से। ये फरमाइश कोल सिटी बड़का खाना से आई है अफजाल तार, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी साहनी के साथ में है अफजल मलिक। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनफ यशफ अब्बासी हैं मारहरा दरवाजा एटा से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और परिवार के बाकी सदस्य रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान के हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें सुन रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। बाबा साहेब कंगड़कर, खाखरबाई कंगड़कर, परमेश्वर रोहिणी और श्रावणी ईश्वरी की फरमाइश मुंगी पैठण महाराष्ट्र से। मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, निशा और सदस्य घर के बाकी। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल की फरमाइश लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से आई हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हैं डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समय राजमीन गुड़िया हमें सुन रहे हैं तेलंगाना भोंगीर से। छोटी बलिया मुंबई करजत से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले और ये फरमाइश है अमितेश कुमार तिवारी की करनई बलिया से। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव और मनीष यादव। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। स्टेशन रोड देवकली किराकत जौनपुर से डॉक्टर राजेश यादव, भोला यादव, गुड्डू सिंह और कमलेश प्रजापति की फरमाइश। कृष्णा कॉलोनी हासी से हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू और राजू मिगलानी। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं। राजदीप परिहार, अपर्णा परिहार गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से।

श्यामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद की फरमाइश। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब और पलक। ये फरमाइश है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा की। एडवोकेट वारिस अली खान इस्लामुन निशा शकील अहमद शहनाज खान और बेबी नुसरा खान है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ।

सरा खान है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू हैं चर डुगरी पिपरिया कबीरधाम से। रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघो कुमार, भानुप्रिया की फरमाइश किशनगंज बिहार से आई है। उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री हैं खरगोन गोगावा से। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश। लता मंगेशकर के साथ आवाज मुकेश की है। फिल्म है शोर। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने इसे लिखा है गीत को और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म में बाकी है सूरज, जीवन, मृत्यु और खून और पानी, लेकिन फरमाइश अगर आपने भेज दी है तो इंतजार करें, हमारे साथ बने रहें।

जी हाँ, पानी का कोई रंग नहीं होता और जिसमें मिला दीजिए उसी के जैसा रंग होता है। लेकिन फिलहाल इस पानी का यानी मानसून में बारिश का इंतज़ार हमें है, और वो जो पानी है जिसका जिक्र इस गीत में हो रहा है उसको बचाए रखना है, यानी हिफाजत से पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ का उपयोग करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। साथ ही हमने सुरक्षित रखे हैं आपके वो रिकॉर्ड जो आपने बुधवार को फोन इन में हमें कॉल किए थे, और वो प्रोग्राम यानी हेलो फोन इन फरमाइश आप सुन सकते हैं कल दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। शोर फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, बबरी बाजार चंदौली के श्रोता हैं विजय जायसवाल, सरोज सुंदर और सुमन जायसवाल। मानसी गौरव कविता मदान और परिवार के सदस्य हैं मोतीनगर नई दिल्ली से। माई रेडियो माई लाइफ और बहुत सारी बातें आपने ऊपर भी लिखी हैं, लेकिन ये कहें कि नाम जो है वो अलग से साफ साफ लिखा करें। और आप हमें डीटीएच पर सुन रहे हैं और गुणवत्ता आपको अच्छी मिल रही, तो बहुत शुक्रिया आपका। त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल, शिवांश और शिवांगी की फरमाइश आई है पकड़ी तर हनुमान मंदिर चांदनी चौक गहमर से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। मोर टक्का खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल और अंतिम पटेल, आपका नाम पहले शामिल हुआ है, एक बारी संदेश भेजें और बाकी सभी श्रोताओं के नाम शामिल हों, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता की फरमाइश। अस्तुपुरा मऊ के श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। पूनम यादव, कुसुम यादव, मोकलपुर मड़िया हूँ जौनपुर से आप ने संदेश भेजा है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा है पदमपुर गंगानगर राजस्थान से। बेरडी से अर्जुन गावनेकर, धीरज सव्वा शेरे और चंचल ढोमने। कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंघेल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से संदेश दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार और रिम्मी तनुश्री। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की फरमाइश आलोट रतलाम से आई हुई है। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, बेबी तनिष्का यादव, नंद कुमार यादव हमें सुन रहे हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी। छत्तीसगढ़ से ग्राम भड़गा कोदवा गोड़ान ये जगह का नाम है श्याम सिंह मरावी, राजकुमार मरावी, रानी रजनी और राहुल पूजा। ग्राम चकपुटी

गांव बाजार भदोही से हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। मोहम्मद नफीस, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद रजा और मोहम्मद अजीज रजानगर वाराणसी से। बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव हैं देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। सिद्धार्थनगर, दरियापुर, बावली के श्रोता हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर, चुनार, मिर्जापुर से। बटिंडा रोड, मंडी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित और तानिया नारंग। चोचकपुर बाजार, गाजीपुर से राम सकल चौधरी। खरसावा झारखंड से हैं सुकरा यादव, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। मुरादाबाद, दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार, साथ में नरगिस खातून। स्टेशन रोड, जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल की फरमाइश। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा है छत्तीसगढ़ पलारी से। काटा रोड, वाशिम, महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे। श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:33 का। आप तक पहुंच रहा है प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म है सूरज। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

जी आशुतोष, और हमारे पास आए हैं आपके बहुत सारे संदेश। सूरज फिल्म का गीत था, रफी साहब की आवाज। फरमाइशें आप सबकी। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा की फरमाइश। ये करें कि वास्तविक नाम भेजा करें और जगह का नाम और बाकी डिटेल सही सही लिखें। हमें सुन रहे हैं बिहार मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार और भानु प्रताप सिंह पंवार हैं, कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से। दादरी गेट भिवानी से ये संदेश आया है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल मेहरा का। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी, शिवम और सतीश। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हैं, फूले नगर अम्बिवली, मुंबई महाराष्ट्र से। विक्रम कणवासरा, सचिन कणवासरा और सतीश कणवासरा हमें सुन रहे हैं कलाना राजस्थान से। ये फरमाइश दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा का। मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ से। मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, डॉक्टर सुनील जनागल हैं, पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ राजस्थान से। ये व्हाट्सएप संदेश पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान और लव दीवान का। गुरैनी गाजीपुर से संदेश भेजा है राम अवध, मुन्नी, अनुराग, अनुपम, अमृता, स्मृता और सपना ने। आपने पहले कागज पे लिखा, फिर फोटो लिया और फिर भेजा, कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी आप जगह का नाम लिख सकते हैं और नाम भी अपना। जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश पोभाली यवतमाल से आई हुई है। सिद्धार्थनगर, दरियापुर, बाभली से गजानन येले, नौदी पेले, विश्वदीप और अशोक येले। मुंदीचक, भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और उनके परिवार के बाकी सदस्य। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की फरमाइश पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से है माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर हैं, बेरड़ी मध्य प्रदेश के श्रोता। ये फरमाइश है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर का। जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश, रोमेश शाह, हसरत शाह, साजिद शाह और अबान शाह हैं, लखिया मड़िया हूं, जौनपुर के श्रोता। अंकुर सहाय आजमगढ़ यूपी से। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम, विनोद और पिंकी जायसवाल। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा एनम।

और मुदस्सिर हुसैन हैं सब्जी मंडी बुढ़ाना से। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ और मंजुला राठौड़ की फरमाइश। अनिल मानसी गौरव कविता मदान और उनके बाकी परिवार के सदस्य हैं मोतीनगर नई दिल्ली से। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और आदित्य जंघेल की फरमाइश। सुकांत काम्बोज, चिन्नू काम्बोज, आतिक्ष काम्बोज हैं देहरादून उत्तराखंड के हमारे श्रोता। औरंगाबाद सहारनपुर से ये फरमाइश आई है। चौधरी महावीर कंबोज, गोल्डी कंबोज, अंकित कंबोज और विपुल कंबोज की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी। नाजरीन तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तखार इब्राहिम हैं बरकाखाना से। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल हैं नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से। यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह की फरमाइश सुल्तानपुर से आई है। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति और शिव प्रकाश प्रजापति हैं करौता वाराणसी से। इमृति यादव ग्राम बर्ठी सकलडीहा चंदौली से। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल की फरमाइश। लील सर बाड़मेर राजस्थान से जाफर खान, दीनू खान, ताज मोहम्मद और लाल मोहम्मद। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। तमाम श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, कल्पना तो हर किसी की ऐसी ही होती है, और ये पूरी हो हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। और फिलहाल सावन का इंतजार, सावन से पहले बारिश का इंतजार, और आपको जो इंतजार होगा अपने संदेशों का, वो हम बता रहे हैं इस फिल्म के लिए जिन श्रोताओं ने हमें फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजी हैं। इससे पेशतर श्रोताओं आपसे कहें कि आप आकाशवाणी वाराणसी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर विजिट किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वहां बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में जानकारियां और कुछ पुराने प्रसारित प्रोग्राम जैसे पत्र के लिए धन्यवाद आप वहां सुन सकते हैं। और प्रोग्राम में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, और उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें। प्रतिक्रियाओं के लिए मेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com, और फरमाइश वाले प्रोग्राम की मेल आईडी है aarvnsfgexp@gmail.com। मेल आधारित फरमाइशें आप बुधवार और गुरुवार को इसी समय सुन पाते हैं, और व्हाट्सएप वाले प्रोग्राम जैसे आज हो रहा है मंगलवार और शुक्रवार को। और इस गाने के लिए बहुत शुरुआत में ही संदेश हमें भेजा पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फौजदेव के हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने। साथ ही हैं पटेल नगर मुगलसराय के श्रोता सुनील कुमार सिंह। आप दोनों को शुक्रिया खासतौर से इसके लिए कि आप एक बार ही संदेश भेजते हैं और फिर पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे और फिरत राम धुर्वे की फरमाइश आई है। पुरानी बस्ती मुबारकपुर से शाहिद जमाल, अनवर जमाल, आसिफ जमाल और दानिश जमाल। व्हाइट फील्ड बेंगलोर से हमें सुन रहे हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी, ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान। ये फरमाइश है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा की। धर्मेश मौर्य, अंचल मौर्य, हिसार हरियाणा से हैं। लवकुश नगर छतरपुर से बालेंद्र कुमार पाल, देवेंद्र कुमार पाल, सुनीता, विनीता, आदर्श और आदित्य, साथ में दिव्यांश पाल। जमालपुर गोगरी खगड़िया बिहार से संदेश भेजा है सिकंदर कुमार ताती, यदुनंदन ताती, अविनाश कुमार, संजय कुमार और रितेश ने। आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग है सहारनपुर से। केकरहिया लोहता वाराणसी से हमें सुन रहे हैं हरिश्चंद्र उपाध्याय और विशाखा उपाध्याय। दिलदार नगर गांव पश्चिम

मल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनाना सिंह यादव और कयूम शाह की फरमाइश। आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी हैं वाराणसी के श्रोता। सूरज सुमंत, अच्छा ये फिल्म का नाम है, हथौज बलिया से सुमंत कुमार प्रजापति। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता हैं। राजमुनिया गांव, नारी पचदेवरा, गाजीपुर से। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल। निमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा और जतिंदर कौर। हाजी इशाक लोलामानी और मोहम्मद उस्मर काजमी, यही नाम आपने लिखे हैं, गोगावा से। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जिशान अहमद सिद्दीकी हैं पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से। और अब आज के प्रोग्राम का आखिरी मुकाम यानी आखिरी गीत। फिल्म का नाम है खून और पानी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

खून और पानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फरमाइशें आप सबकी। एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम हैं गुमला झारखंड से, आपकी फरमाइश आई है। विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर मिलिया जौनपुर से, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद और नावेद इरशाद हैं मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से हैं जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता कोफाली यवतमाल से। सिद्धार्थनगर नांदेड़ से आरती, छोटी बबली और रूपाली। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से संदेश भेजा है मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक और आफरीन कौसर ने। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर हैं तंगौरी मोहाली पंजाब से। जुबैर अली खान सबीहा जुबैर सिद्धपुरा टाउन से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। ईदगाह रामनगर से हैं सोनू अंसारी और लंबे बाबू। स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल, हेमलता हीना हर्षित और लालगिरी गोस्वामी, रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक की फरमाइश आई है। गमरिया जमशेदपुर से हैं रोहन और आर्य जायसवाल। खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार ताती, यदुनंदन ताती और अविनाश कुमार। सोनौली चंदौली से हैं भोला यादव।

जी हाँ श्रोताओ, ये गीत तो यूं ही अपने आप खत्म हो गया और साथ ही खत्म हुआ प्रोग्राम में आज का ये सिलसिला आपके संदेशों और गीतों का। आपको बता दें कि 11:58 तक आपके जितने भी संदेश अब तक यानी कि आए हुए हैं वो प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। और आपको इत्तला कर दें यानी जानकारी दे दें कि कल दिन में 11 से 12 बजे तक और रविवार को 12 से 1 बजे तक आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश सुन सकते हैं हमारे साथ। और पत्र के लिए धन्यवाद, इस रविवार भी दिन में 1:15 बजे यानी 1:15 पर प्रसारित होगा। उस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं ही भेजा करें, फरमाइशें वहां हम लोग इंटरटेन नहीं करते यानी वहां आई फरमाइशें पूरी नहीं की जाती हैं। तो pkldeirvaranasi@gmail.com पर कार्यक्रमों से जुड़े अपने विचार हमें भेजें। और आखिरश यानी अंत में ये संदेश अभी मिला है दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव और दीनानाथ सिंह यादव का। और अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।

0: बहुत बहुत सुंदर विचार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं।
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर।

0: भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओ, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओ, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पर
1: ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी,
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ

0: की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
2: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
2: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा।
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों

0: कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।

0: सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
1: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती।

0: भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए।

0: अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
0: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: ए साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं अच्छा, किसी से नहीं कहेंगे?
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
3: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
4: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में सील लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के ठीक 12:30 हुए हैं। आप सुनेंगे सुगम संगीत।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए
11: 0542227658।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूजा बसाक की गाई भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए संत कबीर दास की रचना।

0: मीराबाई की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी पूजा बसाक। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिए विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। राग है मदमाद सारंग। तबले पर संगति की है पंडित पुंडलीक कृष्ण भागवत ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। राग था मदमाद सारंग। तबले पर संगति की पंडित पुंडलीक कृष्ण भागवत ने। ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने

0: राजा विकास समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार भूपेंद्र खरवार, पिता का नाम उपेंद्र खरवार, ये लोहरा खास इलिया चंदौली के निवासी हैं और 6 जुलाई 2024 की शाम 6 बजे से अपने घर से लापता हैं। भूपेंद्र खरवार की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा शरीर, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी रंग का शर्ट और बैगनी रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचित करें। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक अनीता कुमारी, पिता का नाम किशन कुमार, ये ग्राम शिवदसा चौबेपुर वाराणसी की निवासी हैं और 18 जुलाई 2024 को दिन में 11 बजे से घर से निकली और लापता हो गई। अनीता कुमारी की आयु 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। थानाध्यक्ष थाना चौबेपुर वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार प्रियंका पटेल, पिता का नाम नंदलाल पटेल, ये पटेल नगर मुनारी चौबेपुर वाराणसी की निवासी हैं और 28 जुलाई 2024 की सुबह 10:30 बजे से अपने घर से लापता हैं। प्रियंका पटेल की आयु 26 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है।

आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना चौबेपुर वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात में 10:30 पर पंडित जसराज का गायन आप सुनेंगे। खेल पत्रिका प्रसारित होगी रात्रि 10:00। अंजुमन कार्यक्रम में रात में 9:30 पर गैर फिल्मी गीत और गजलें सुनवाई जाएंगी। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात में 8:00 पूजा बसाक के गाए भजन आप सुन पाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर अनुभव खेती में विषय पर इंद्रसेन सिंह से राजेश नारायण की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही लोकगीत होंगे, कलाकार अमलेश कुमार पांडे, इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात सिने दर्पण, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। 2:30 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम सरोज खान पर केंद्रित है और प्रस्तुति पूजा सिंह की। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर आज फोन इन कार्यक्रम होगा, विषय प्लास्टिक मुक्त घर की शुरुआत हमसे। साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जदीद इंतज़ामी तरबियत के लिए 464 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 22 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर बनाए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एकेडमी के जदीद तरीन नए कैंपस का अफ्तिताह किया। इसके अलावा वज़ीर-आला ने नवें उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2026 का अफ्तिताह किया और उसका सोवनियर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने तरक्की पसंद बागबानों को एजाज से भी नवाजा। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के काम का जायजा लिया। उन्होंने शेल्टर होम्स और ट्रेनिंग सेंटर और हाफ वे होम्स में रहने वालों की देखभाल के लिए ग्रांट की रकम 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: देही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यह एक्ट मुल्क में रोज़गार को यकीनी बनाने, देही माश को मजबूत करने और देहात की तरक्की को तेज़ करने की सिमत में एक अहम कदम है। नायब वज़ीर-आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक्ट के आगाज़ के लिए मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह

0: मजदूरों को इज्जत देने, गरीबों की मदद करने और देही हिंदुस्तान में देहातों की पायदार तरक्की को तेज करने का एक ताकतवर जरिया बनेगी। SIT की टीम श्रीराम मंदिर चंदे के गबन के इल्जाम की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर अयोध्या पहुंची। टीम अपनी तहकीकात जारी रखते हुए मुख्तलिफ नुक्ताए नजर से तहकीकात कर रही है। तफ्तीश की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दरियासना अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीराम मंदिर चंदे के गबन केस के एक मुलजिम लव कुश मिश्रा से जुड़ी एक जेर तामीर जायदाद को नोटिस जारी किया है। सेक्रेटरी ADA ने बताया कि नोटिस बिल्डिंग रेगुलेशंस की मुश्तबे खिलाफ वर्जियों की वजह से जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज लखनऊ के मुख्तलिफ मराकज पर दूसरे दिन भी मुनक्किद हो रहा है। कल 4 जुलाई तक होने वाले इम्तिहान के लिए रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों और दूसरी रियासतों से भी लोग लखनऊ आए हैं। इंतज़ामिया ने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। बायोमेट्रिक के बगैर किसी उम्मीदवार को सेंटर में दाखिल नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 29 जून से लागू हो गई है। नई स्कीम ने 1952 की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम की जगह ली है। इस स्कीम का मकसद डिजिटल तामील को मजबूत करना, इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, अकाउंट की मुंतकली को आसान बनाना और लेबर प्रोविडेंट फंड के नए ढांचे के साथ हम आहंग करना है। नई स्कीम के तहत लाजमी EPF का हिस्सा मुलाजिम और आजिर दोनों के लिए तनख्वाह के 12% पर रहेगा। 10% की मौजूदा शरह मरकजी हुकूमत के जरिए मुतला करदा इदारों पर लागू रहेगी। स्कीम में जुजवी रकम निकालने के कवानीन को भी अपडेट किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से अगले 3 दिन तक रियासत के मशरकी और मगरबी डिवीज़नों में बारिश की पेशगोई की है। दरियासना रियासत में मानसून की आमद से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई अजला में लोगों को अब भी नमी का सामना है। जुनूब मगरबी मानसून मंगल से सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सखियों के साथ,
7: सखियों की बात,
6: सखियों के जज्बात,
7: गृहलक्ष्मी।
8: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता सखियों को सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार। और शीला तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
9: नमस्कार सुरेखा जी, और श्रोता सखियों को भी मेरा यानी कि शीला का प्यार भरा नमस्कार।

0: और सखियों, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इन चंद लाइनों के साथ करना चाहूँगी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है।
1: क्या बात है पर पता है
0: हाँ?
1: ये सब लाइनें आदमी तभी लिख पाता है या बोल पाता है ना, जब वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हो। और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
0: बिल्कुल सही कह
1: यानी
0: रहे हैं।
1: अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सखियों, आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है ना, हम सब ने जानबूझ के अपना रूटीन गड़बड़ गड़बड़ कर लिया है, गलत कर लिया है। जैसे होता यह है कि कुछ तो व्यस्तता हमारी काम की होती है, वो तो ठीक है कि काम है तो हमें व्यस्त रहना है और व्यस्त रहना भी आवश्यक है। लेकिन कई बार ना हम अनायास बिना काम का व्यस्त हो जाते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल देखना। और अगर देर रात तक जगेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुबह देर से उठेंगे और नतीजा क्या होगा, नाश्ता भी देर से, नहाना धोना देर से, खाना देर से और फिर वापस सोना भी देर से, और सारा दिन काम में आलस और सुस्ती बनी रहती
0: हाँ,
1: है।
0: सही कह रही हैं। और हमारी शारीरिक गतिविधियाँ भी तो कम हो गई हैं, और हमारी आदत होती जा रही है कि हम शारीरिक रूप से श्रम कम कर रहे हैं। हमारे किचन में, हमारी रसोई में बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, तो एक तरह से शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं, तो इसका भी असर है कि हमारी जो दिनचर्या में बदलाव आया है। तो इन छोटी छोटी आदतों को अगर हम सुधारें तो हो सकता है हमारी सेहत भी सुधर जाए।
1: ये बिल्कुल सही है सखियों। तो अपनी इन आदतों को सुधारना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर वो आदत ऐसी हो जाए कि जैसे मोबाइल वाली लत है ना, वो हम बच्चों में क्या कहें, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा हो गई है
0: सही
1: कि
0: कह रही
1: आप
0: हैं।
1: हर आधे घंटे पे आदमी मोबाइल देख रहा है, चेक कर रहा है। तो ये इस आदत को अगर आप धीरे धीरे सुधार लीजिए कि नहीं, सिर्फ काम से ही मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, या दिन भर में सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे ही देखना है, तो मुझे लगता है कि रूटीन काफ़ी ठीक हो जाएगा। उसकी
0: हाँ
1: वजह से क्या है कि आप थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करिए। और खान पान की जब बात होती है तो मैं
0: हाँ
1: एक बात और कहना चाहूंगी सखियों
0: क्या
1: से कि जो रात का भोजन है ना, दिन में तो आप कुछ भी खा लीजिए, हैवी भोजन भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन रात का भोजन 8 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक आप कर लें। क्योंकि 8 बजे के बाद वाला भोजन जब पचता नहीं है ना, तो उससे क्या है कि पेट संबंधित बहुत सारी समस्या हो जाती है।
0: हाँ
1: और जाने अनजाने में ऐसा लगता है कि हमें समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रही हैं।
0: हाँ
1: पर
0: सही कह
1: सखियों,
0: रही हैं।
1: होता यही है कि हम अपनी जो रूटीन अगर सही कर लें और खान पान सही कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% समस्या हम समाधान कर
0: हाँ,
1: सकते हैं
0: समाधान
1: इसका।
0: कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपने 8 बजे जैसे बात कही ना कि सोते थे, 8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, तो पहले के लोग जल्दी उठते थे, जल्दी सोते भी थे, व्यायाम करते थे, पौष्टिक भोजन करते थे। लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली में हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को पीछे छोड़ रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे नींद की कमी, आँखों की समस्याएं, ये सारी बीमारियाँ
1: ये
0: बहुत सी
1: सारी
0: होती जा रही
1: बीमारियां तो हैं, ये तो अपने
0: हैं।
1: स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, लेकिन समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं। कहीं बाहर गए तो प्लास्टिक के ही उसमें जो है, जैसे आप पॉलिथीन ले लीजिए या बैग ले लीजिए, उसी में सामान आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज कुछ खास दिन भी है,
0: क्या खास दिन है
1: वो है
0: आज?
1: प्लास्टिक।
0: अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ना
1: तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर फोन पर हमारे साथ सखियां जुड़ी हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं।
0: आज?
2: हेलो।
1: हेलो सखी।
2: नमस्ते,
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: मैं पुष्पांजलि शर्मा।
1: पुष्पांजलि जी, कहाँ से बात कर रही हैं पुष्पांजलि?
2: मैं वाराणसी भोजपुर से बात कर रही हूँ।
1: भोजोवीर से।
2: जी,
1: अच्छा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। मौसम में थोड़ी राहत है ना?
2: मौसम में बहुत राहत है, बारिश भी थोड़ी बहुत होने लग गई है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन टेम्परेचर काफी कम हो गया है।
1: अच्छा, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है?
2: आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो महिलाओं का ये कार्यक्रम है ना, मैं इसे नियमित सुनती हूँ, और मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगती है जो आप लोग छोटी छोटी चीजों पे टिप्स देते हैं। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किचन से रिलेटेड टिप्स हो या सौंदर्य से।

0: रिलेटेड टिप्स हो या किसी चीज को अच्छे से संभाल के रखने का टिप्स हो, तो मैं ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के बताने के हिसाब से अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस करती रहती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: आज का हमारा विषय है प्लास्टिक मुक्त घर की। यदि शुरुआत करनी हो तो आप कैसे करेंगी?
0: प्लास्टिक मुक्त करना, देखिए सबसे पहले जो मुझे लगता है कि गृहिणियों को सबसे जो जहां सबसे इस्तेमाल होता है वो किचन हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे सब्जी लाना हो, छोटे छोटे काम तो हमें किचन से ही, जैसे मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, जब मैं किचन से जाती हूँ तो मैं अपने साथ अपना झोला लेकर जाती हूँ जिससे मैं सब्जी वगैरह उसी में ला पाऊँ। और स्टोरेज के लिए भी मैंने जितने प्लास्टिक के कंटेनर्स थे सबको चेंज कर दिया है मैंने स्टील और कांच के जार से। कोई भी चीज

0: कर दिया है मैंने स्टील और कांच के जार से। कोई भी चीज अब मैं प्लास्टिक में नहीं रखना चाहती, हालांकि असंभव होता है कभी कभी, लेकिन कोशिश करना चाहिए। मैं थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ, जैसे जब मैं अपने साथ जाती हूँ तो अपने साथ हमेशा मेरी गाड़ी में 4-6 बैग रखती है, इस वजह से प्लास्टिक में थोड़ा सा कम कर लेती हूँ।
1: मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ तो होंगी
0: जी
1: ही,
0: बिल्कुल,
1: और क्या
0: होम
1: करती हैं?
0: मेकर तो हूँ ही, साथ
1: जी
0: में मैं एडवोकेट भी हूँ, प्रैक्टिस
1: अच्छा
0: करती हूँ कोर्ट में। हाँ मैं एडवोकेट हूँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे मेरे ऑफिस में समटाइम्स होता है कि 2-4 लोग आ गए, अब आपको अगर पानी भी पिलाना है तो की ग्लासेस ही करते हैं, कैरी डिस्पोजेबल ग्लासेस निकालो यूज करो, लेकिन मैं स्टील के ग्लासेस प्रेफर करती हूँ।
1: चलिए,
0: तो
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करती
0: मेरी
1: रहिए, कोशिश करती रहिए।
0: पानी की बॉटल्स भी मेरी स्टील की होती हैं, मैं प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज करती, और मेरे बच्चों का टिफिन भी स्टील का होता है, प्लास्टिक का टिफिन नहीं यूज
1: ये
0: करती।
1: तो बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक हैं। इसी प्रकार से और लोगों को भी जागरूक करिए,
0: जी जी
1: है ना?
0: जी जी
1: आपकी पसंद का कोई गीत हो तो बताएं।
0: मेरी पसंद का गीत अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी कभी कभी, उसका जो टाइटल सॉन्ग है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
1: चलिए, तो आपको और अपनी और सखियों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो सखी, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: सखियों को भी
1: जी हमारा नाम स्वाति है।
0: सखी, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं और आपकी हॉबीज क्या है, या आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो अब देखिए हम विषय पर आते हैं। सखी, आज का हमारा विषय है प्लास्टिक मुक्त भारत की शुरुआत हम अपने घर से करें। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, हमें और हमारी सखियों को बताएं।
1: अब जैसे कि आज के बदलते परिवेश में भारत में या विश्व में हर जगह प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है, जो कोई ना कहीं हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन शैली सबको नुकसानदेह हो रहा है। तो
0: तो
1: इससे हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए।
0: जी हाँ, लेकिन हर तरफ प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और उसको लेना भी आसान होता है कि हम बाज़ार गए और कुछ भी प्लास्टिक की थैली में हमारे पास है नहीं, कुछ ऐसा कोई थैला तो हमें प्लास्टिक की थैली में मिलता है और हम आराम से लेके आते हैं, तो अपनी सुविधा देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदायक है। तो अगर आपके किचन में भी बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां हैं तो आप क्या करती हैं इसका?
1: उसको या तो जो है हमारे वैसे हम अपने घर से प्लास्टिक की थैली में का जल्दी उपयोग नहीं करते हैं। अगर हम बाजार जाते हैं तो अपने पर्स में हमेशा एक थैला रखे रहते हैं, जो भी सामान लेना हो मोस्टली हम थैले में ही लेते हैं। ही करते हैं कि भाई हम प्लास्टिक की थैली में जूठा या खाने की खाद्य सामग्री हम बाहर ना फेंके, उसको हम ऐसे ही ले जा करके डस्टबिन में डाल देते हैं या जहाँ पशु मिलते हैं वहां पे डाल देते हैं।
0: तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम प्रयोग करें प्लास्टिक की थैलियों का। और अगर बच्चों को आप बताती हैं कि देखिए हम जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, तो आप अपने बच्चों को बताती हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम करें?
1: हाँ, हम अपने घर के बच्चों को हमेशा कहते हैं कि प्लास्टिक के सामान का उपयोग कम से कम करें, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करें, घर से थैला लेकर के जाएं। और जो है कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ प्लास्टिक वाली है उसको इधर उधर मतलब ना फेंके, सड़क पे ऐसे ही उसको ना फेंके, उसको डस्टबिन में डालें।
0: अच्छा स्वाति जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी राय जान के भी हमें अच्छा लगा कि आपको प्राकृतिक चीज़ों से लगाव है। आप मतलब ऐसी चीज़ों का उपयोग करती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो हमें फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। हेलो सखी,
1: हेलो सखी,
0: गृहलक्ष्मी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आप बात कर रही हैं, अपना नाम बताइए हमें।
1: हम नम्रता यादव बोल रहे हैं, ये खारी कुआं जंगमबाड़ी से।
0: आज का हमारा विषय भी यही है सखी कि प्लास्टिक मुक्त घर की शुरुआत हमसे। तो मतलब आप मार्केटिंग करने का शौक रखती हैं लेकिन साथ में अपना थैला लेकर जाती हैं।
1: हाँ, हम अपना साथ में थैला जरूर ले जाते हैं।

0: आप अपने बच्चों को या घर में अन्य लोगों को बताती हैं कि कपड़े के ही थैले लेके जाइए बाजार से कुछ भी लाना हो तो?
1: हाँ, बाजार से जब मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेने जाते तो झोला उन्हें साथ में, प्लास्टिक जैसे कपड़े का झोला होता है, वो देते हैं कि इसी में सब्जी वगैरह ले आइए, इसी में सामान लेकर आइएगा, थैले का यूज कम करिएगा।
0: और हमें भी आपसे बात करके और ये सुन के अच्छा लगा कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और रेडियो सुनना आपको पसंद है, तो हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: हेलो सखी,
1: हेलो सखी, पूजा
2: क्या नाम है आपका?
1: पांडे,
2: पूजा जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: हम काशी वाराणसी से, मैमूरगंज
2: वाराणसी में कहाँ से बोल रही हैं पूजा जी?
1: से बात कर रहे हैं
2: अरे वाह, महपुरगंज से बात कर रही हैं।
1: जी।
2: पूजा जी
1: जी
2: आप क्या करती हैं?
1: ऐसे तो हम विद्यालय संचालिका हैं, हम स्कूल चलाते हैं
2: अच्छा, यानी आप नौनिहालों को शिक्षा देती हैं।
1: जी।
2: अच्छा,
1: बिल्कुल
2: ये
1: जी,
2: तो बड़ी
1: बिल्कुल
2: अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा देते समय कुछ ऐसा भी आप कर पाती हैं क्या? कि एक तो होता है कि केवल बच्चों को किताबी शिक्षा दी जाती है,
1: जी
2: और
1: जी
2: दूसरे कुछ इस प्रकार का अवेयरनेस
1: जी
2: जिससे उन्हें लाभ हो, और साथ ही साथ में हमारे समाज को भी लाभ हो और हमारे पर्यावरण को भी लाभ हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा पाती हैं?
1: देखिए, एक एज ए शिक्षक के नाते ये मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि किताबी ज्ञान देने के साथ साथ हम एक जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम करें। और ये हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में लगभग सभी शिक्षक जब अपनी कक्षाओं को समाप्त करते हैं तो 5 मिनट ये जरूर उनको नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि पर्यावरण, पर्यावरण को एक नागरिक होने के नाते हम क्या दे सकते हैं अपने भारत की प्रकृति को, इस विषय पे बहुत बात होती है। क्योंकि आजकल देखिए एक कॉमन चीज है, बच्चे जो है वो चिप्स जो है और ये सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा उनको मतलब स्वाद आता है और वो खाते हैं, कहीं जाते हैं और
2: ये
1: वो
2: तो
1: हमें जी
2: खान पान की बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल आपने चिप्स की बात की या कोई भी चीज़ बच्चे भी लेकर आते हैं या हम स्वयं भी बाजार से लेकर आते हैं,
1: जी
2: तो ज़्यादातर प्लास्टिक और पॉलीथीन की पैकिंग होती है,
1: जी
2: उससे हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या इसकी शुरुआत हम अपने घर से कैसे कर सकते हैं?
1: मैं वही बताना चाह रही थी कि जब भी वो इस तरीके की चीजें बाजार से लेते हैं तो आप देखिए जो कैरी बैग है वो प्लास्टिक में ही ज्यादातर उपलब्ध है। तो ये बच्चों को जरूर हम बताते हैं कि इसको हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप घर में झोले आप बना के रखो, आप कोई चीज सामान बाहर से लेने जाओ या अपने माता पिता को भी आप ये बताओ कि हमें किसी भी तरीके से प्लास्टिक, क्योंकि देखिए कुछ प्लास्टिक की ऐसी मतलब गलत क्वालिटी है कि ये हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रही है जिसको ये हर आदमी जानता है, लेकिन जब उसको ये करना पड़ता है तो फिर कहता है अरे चलो भाई ये तो ले ले, एक एक बार मेरे लेने से क्या होता है। बस मेरा ये आपके माध्यम से जैसे मैं अपने स्कूल के बच्चों को बोलती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े प्रयास से ही हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो प्लास्टिक का उपयोग, पॉलिथीन का उपयोग, कैरी बैग का उपयोग कृपया करके एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें नहीं करना चाहिए।
2: पूजा जी आपने हमसे बात की फोन के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार
2: जी, नमस्ते।
1: जी, नमस्कार।
2: मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
1: मैं निहारिका सिंह हूँ फ्रॉम भुवनेश्वर नगर कॉलोनी,
2: निहारिका
1: अग्नि
2: जी।
1: बाजार वाराणसी।
2: अच्छा निहारिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस गृहलक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: क्या करती हैं निहारिका जी?
1: मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ पर आई एम प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, पेंटिंग्स बनाती हूँ बीएचयू के सर लोगों के साथ में, हमारा ग्रुप है और उनके साथ में काम करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ, कमीशन वर्क भी करती हूँ।
2: ओहो, यानी आप एक आर्टिस्ट हैं,
1: जी।
2: तब तो आपको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद होगा और आप उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी भी कर पाती होंगी ना?
1: जी, मैं आफ्टर ऑल सारी मीडियम्स में काम

0: जैसे ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग है, चारकोल पेंटिंग्स है, तो और पोर्ट्रेट है, किसी का बनाना हो कमीशन वर्क भी करती हूँ।
1: अच्छा, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
0: जी, बहुत बहुत पसंद
1: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है आज का हमारा विषय है कि अगर प्लास्टिक मुक्त करना हो अपने घर को, यानी अपने घर से ही शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगी?
0: जी। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक अपने जीवन से दूर रखना चाहिए, और इस क्रम में हमारा एक क्लब भी चल लखनऊ से, उसमें हम लोगों ने अनगिनत मतलब सैकड़ों क्या कई हजारों बैग्स बना बना करके सिलवा करके उनको जो है वो हमने डोनेट किया है लोगों को, और
1: जी
0: हम जो है वो इस क्षेत्र को अपना बहुत ज्यादा मानते हैं कि इसमें काम करना चाहिए।
1: अच्छा, आपको ये पता है कि जब हम बाज़ार से कोई सामान लेकर आते हैं तो ज़्यादातर तो वो पैकेट्स में ही मिलते हैं, पॉलिथीन के पैकेट्स होते हैं, तो उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं घर आने के बाद?
0: के बाद तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि उसको हम कैंची से कट ऑफ करके अपना कंटेनर या अपना जो है वो स्टील का या कांच का जो हमारा कंटेनर है किचन में रखता है वो उसमें हम उसको पलट करके तब यूज करते हैं, और जो हमारी पॉलिथीन भी निकलती है उसका भी हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कूड़े के डिब्बे में लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए वो पॉलिथीन भी तो आखिर हमारी किसी ना किसी तरीके से उसको हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा ना, तो
1: जी,
0: इसलिए जो है वो उसका हम लोग घरेलू उपयोग कर लेते हैं।
1: इतना आसान तो नहीं है क्योंकि घर के बाकी सदस्य तो तैयार नहीं होंगे इसके लिए कि हम पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त कर दें घर को, लेकिन फिर भी अगर घर वालों को तैयार करना हो तो आप कैसे कन्विंस करेंगी उन्हें?
0: वाले तो चूंकि मेन धुरी तो मैं हूँ, मेन तो मुझे ही ज्यादातर हैंडल करना होता है घर के कचरे को या घर की प्लास्टिक को, तो धीरे धीरे जब हम करने लगते हैं तो वो चीज रूटीन में आ जाती है, और प्लस हमें कई बार भाई लोगों को ये बताना भी पड़ता है कि नहीं बाजार जा रहे हो तो ये बैग लेकर के जाओ, झोला लेकर के जाओ, और उसमें जो है वो आपको सामान लाने में सुविधा होगी वहां से। हम मैं अक्सर अपना बैग लेकर के ही मार्केट में निकलती हूँ, कभी भी मैं बिना बैग के नहीं जाती, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी को समझ में आएगा कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है।
1: चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अपना बैग लेकर के निकलती हैं, धीरे धीरे इसी तरीके से शुरुआत होगी।
0: लेकर के नहीं निकल पाती हूँ या किसी कारणवश रास्ते से मुझे कुछ लेना होता है तो जो दुकानदार मेरे परिचित हैं वो मेरे को पूछते हैं कि दीदी आज आप बैग नहीं लेकर के आई, तो मुझे कहना पड़ता है कि हाँ आज मैं बैग लेकर के नहीं आ पाई, अदरवाइज मैं उनकी पॉलिथीन को नो कहती हूँ कि नो प्लीज पॉलिथीन मत दीजिए, मेरे पास अपना बैग है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक उन दुकानदारों के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब आप अगर अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो वो मुझे बताएं।
0: जी मुझे ऐसे तो एक
1: गीत
0: अभिमान फिल्म का गीत बहुत ही प्यारा गीत है, और मेरी बिंदिया है ना, तेरी बिंदिया
1: चलिए,
0: फिल्म
1: तो आपकी पसंद पे सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का ये। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शीला देखो, गीत तो बहुत ही सुंदर था, और देखिए इसे ऐसे ही ना स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है और खुश रहना भी बहुत आवश्यक है। समय से ही सारा काम करना आवश्यक है, और घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए।
1: तो सभी को कहते हैं
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडेय। पहले सुनिए इनका गाया एक खेमटा।

0: Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen, and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत हजारों लोग अब भी लापता गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेश बाक्षा
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक

0: एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां आपात दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित

0: निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना।

0: सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक

0: आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रिड दोस्त पूजा। नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम उस शख्स का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपनी प्रतिभा से कई प्रसिद्ध नायक नायिकाओं को थिरकाया, नचाया और दर्शकों का मन बहलाया और सिनेमा को यादगार गीतों की सौगात दी।

जी हाँ, जिसने ऐसे गीतों को कोरियोग्राफ किया जिसे सुनना तो अच्छा लगता ही है, पर पर्दे पर उन गीतों के नृत्य ने तो गजब ही ढा दिया था। उनके डांस मूव्स इतने पॉपुलर हुए कि उन अदाओं के साथ इस फनकार का नाम जुड़ गया। और आप कोई और नहीं बल्कि हैं हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर सरोज खान।

कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने बॉलीवुड के सितारों को इतिहास रचना सिखाया। जी हाँ, सरोज खान जब उंगलियां उठाती थी तो धक धक करने लगा दिल भी रुक जाता था। जब वो आंखें मटकाती थी तो 1 2 3 गिनते गिनते पूरी दुनिया दीवानी हो जाती थी। आज एक ही कलाकार में बात कर रही हूँ मैं, भारतीय सिनेमा की पहली और सबसे बड़ी महिला चीफ कोरियोग्राफर सरोज खान, यानी हमारी प्यारी मास्टर जी की। 3000 से ज्यादा गानों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली मास्टर जी का सफर आसान नहीं था। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं उस गीत से जिसने बॉलीवुड में कोरियोग्राफर्स को एक नया मुकाम और सम्मान दिलाया। सुनते हैं माधुरी दीक्षित की जादुई अदाओं और मास्टर जी के स्टेप से सजा यह गीत।

क्या बात है, इस गाने को सुनकर आज भी पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबको नचाने वाली सरोज खान की अपनी जिंदगी ने उन्हें बचपन में बहुत कठिन मोड़ों पर नचाया था। 22 नवंबर 1948 को मुंबई में जन्मी सरोज जी का असली नाम निर्मला नागपाल था। विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से सब कुछ छोड़कर बेहद तंगी में भारत आया था। घर चलाने के लिए उन्होंने महज 3 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो बैकग्राउंड डांसर बन गई। मधुबाला के मशहूर गाने आइए मेहरबा में वो पीछे डांस कर रही लड़कियों में शामिल थी। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सिर्फ देखकर डांस सीख जाने वाली सरोज जी को बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर पहला बड़ा ब्रेक मिला 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम से। लेकिन उस दौर में पुरुषों का दबदबा था। लोग कहते थे एक औरत हमें क्या डांस सिखाएगी, पर मास्टर जी तो मास्टर जी थी। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर आया साल 1986 जब फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने उनकी सिखाई ऐसी बीन की धुन पर डांस किया कि पूरा देश देखता रह गया। आइए सुनते हैं वही आइकॉनिक सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार मेरे यानी पूजा के साथ, और आज बात हो रही है बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन मेकर सरोज खान की। दोस्तों, सरोज खान सिर्फ स्टेप्स नहीं सिखाती थी, वो अदा सिखाती थी। उनका मानना था कि जब तक चेहरे पर हाव भाव यानी एक्सप्रेशंस ना हो, तब तक डांस बेजान है। और उनके इन एक्सप्रेशंस को पर्दे पर अमर किया दो देवियों ने, पहली श्रीदेवी और दूसरी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित तो उन्हें गुरु मानती थी। माधुरी जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं दे पाती थी तो सरोज जी प्यार से डांट कर कहती थी, ए लड़की, रो क्यों रही है, जरा चेहरे पर लाली ला। और जब माधुरी बहुत कमाल का शॉट देती थी तो सरोज जी उन्हें इनाम में 1 रुपया देती थी। माधुरी के लिए वो 1 रुपया करोड़ों के अवार्ड से बढ़कर था। दोस्तों, सरोज जी की इसी खूबी की वजह से फिल्म फेयर को स्पेशल बेस्ट कोरियोग्राफी की कैटेगरी शुरू करनी पड़ी थी, क्योंकि उससे पहले कोरियोग्राफर्स को अवार्ड ही नहीं मिलता था। और शुरुआती 3 साल ये अवार्ड लगातार सिर्फ सरोज खान ही जीत कर ले गई। चलिए मास्टर जी के इसी एक्सप्रेशन और अदा के जादू को महसूस करते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के इस महामुकाबले सॉन्ग से, जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलाया। ऐश और माधुरी की जुगलबंदी, डोला रे डोला।

दोस्तों, इस गाने के एक एक स्टेप में जो भव्यता है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी ही ला सकती थी। 3 जुलाई 2020 को सरोज खान जी इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकती। आज भी जब कोई अभिनेत्री अपनी आंखें मटकाती है, जब भी कोई डांसर अपनी कमर थिरकाता है, तो उसमें कहीं न कहीं मास्टर जी की सीख जिंदा नजर आती है। जाते जाते सरोज जी का वो डायलॉग हमेशा याद रहेगा जो वो डांस शोज में अक्सर कहती थी, खुश रहो और दिल से नाचो। आज के इस सफर में बस इतना ही। मास्टर जी को हमारा शत शत नमन। आप सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पूजा, लेती हूँ आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये प्रोग्राम कोरियोग्राफर यानी नृत्य निर्देशिका सरोज खान पर केंद्रित था। कार्यक्रम की प्रस्तुति पूजा सिंह की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये प्रोग्राम कोरियोग्राफर यानी नृत्य निर्देशिका सरोज खान पर केंद्रित था। कार्यक्रम की प्रस्तुति पूजा सिंह की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम वेव, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब सम्पन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और DRM 1233 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम

कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे दिल जले फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। अगला गीत है फिल्म लम्हे से, आवाज़ें लता मंगेशकर और हरिहरन की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है शिवहरी ने।

लता मंगेशकर और ए हरिहरन के गाए फिल्म लम्हे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: कब, कौन, कहाँ, कैसे मिलेगा ये वक्त को पता होता है, और जब सही वक्त आता है तो रिश्ता जोड़ने का कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। जैसे हमारा वक्त आया और रेडियो माध्यम बन गया आप सब से, हमारे यानी कि आप श्रोताओं से हम युवा साथियों के जुड़ने का। और सच पूछिए तो वक्त ने रेडियो के माध्यम से हमें हमारे सपनों को जीने का मौका दिया और आपके बीच हमारी आवाजें पहुंचाई।
1: तो उन्हीं आवाजों में से आज आपके बीच युववाणी कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आस्था,
0: और मैं शिवानी गुप्ता।
1: तो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
4: ओ,
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: अच्छा ऐसा हुआ था क्या?
8: हाँ मैं कह रही हूँ ना, यही बात थी।
7: फिर तो तुम उनकी मदद करनी चाहिए थी, पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए थी। अरे देखो तुम्हारी बातें सुनते सुनते इतना मग्न हो गई कि हमारे दोस्त भी सोच रहे होंगे कि हम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा शिवानी, तो ये बातें दोस्तों को भी बता देती हूँ ना कि क्या बात कर रहे थे हम। दरअसल दोस्तों मैं शिवानी को अपने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग दादाजी की बात बता रही थी कि वो परेशान चल रहे थे, उनका ना कोई बैंक अकाउंट नहीं है और अकाउंट खुलवाने की बात सोची तो उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी।
7: क्योंकि आस्था पढ़ाई करती है तो उन्हें लगा कि ये पढ़ी लिखी लड़की उन्हें कुछ बता सकती है, उनकी कुछ मदद कर देगी, तो उन्होंने अपने

0: अरे बातें इसे बताई।
1: तभी तो दोस्तों मैंने उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताया।
0: हाँ, दरअसल दोस्तों आज ही नहीं बल्कि एक दशक पहले से ही कई भारतीयों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण तथा हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए बैंकिंग ना एक दूर का सपना था। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के बिना लाखों लोग घर पर जमा नकदी और अनौपचारिक ऋणदाताओं से मिलने वाले ऊंची ब्याज दरों वाले ऋणों पर ही निर्भर थे, जिससे वे जोखिम के चक्र में भी फंस जाते थे।
1: और 2000 अगस्त 2014 में यह वास्तविकता बदलने लगी। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना PMZVI का उद्देश्य भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता, एक वित्तीय पहचान और ऋण, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक सेवाओं तक
0: पहुंच प्रदान करना है, सही कहा तुमने।
1: बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करने तथा वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करने और वंचितों व वंचितों की सेवा करने के मिशन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 56.16 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें मध्य अगस्त 2025 तक कुल जमा राशि 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी।
1: और 56% जनधन खाते महिलाओं के हैं, जो वित्तीय पहुंच में जेंडर समानता को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाते हैं।
0: 28 अगस्त 2025 को जब ये योजना 11 वर्ष की हुई तो इसकी उपलब्धियां पूरे देश में दिखाई दी। ग्रामीण खाता स्वामित्व में वृद्धि से लेकर डिजिटल लेन देन में वृद्धि तक, जो एक परिवर्तित वित्तीय परिदृश्य का संकेत है दोस्तों।
1: तभी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मान्यता दी है। यह प्रमाणित किया गया है कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एक सप्ताह में खोले गए सर्वाधिक बैंक खातों की संख्या 1,80,96,130 है, और यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा हासिल की गई है।
0: दोस्तों, सही मायनों में अगर हमें सरकारी योजनाओं की जानकारी हो तो उसका लाभ उठाकर अपना जीवन आसान बना सकते हैं।
1: और नहीं तो क्या, अब ये योजना भी तो कितनी लाभकारी है।
0: कौन सी?
1: अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। यह एक राष्ट्रीय पहल थी। इसका मुख्य उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है।
1: बिल्कुल, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक विस्तृत लेख भारत में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच और बेटे की चाहत के कारण लड़कियों के जन्म और दर, उनकी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस लैंगिक असंतुलन और सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी।
0: ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास था दोस्तों।
1: बिल्कुल, और इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कुछ ठोस और महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
0: बालिकाओं को शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
1: बिल्कुल, और शुरुआत में इसे देश के उन 100 जिलों में लागू किया गया था जहां बाल लिंगानुपात सबसे चिंताजनक स्थिति में था। बाद में इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया।
0: और तुम्हें बताऊं आस्था, सेल्फी विद डॉटर्स जैसे सोशल मीडिया अभियान ने ना इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया।
1: हाँ, सही में। अरे वाह। और दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक सरकारी योजना नहीं बल्कि समाज की सोच को बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज शिक्षित और सशक्त होता है।
0: बिल्कुल, हालांकि इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज और सरकार मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और बेटियों को उनके जन्म से लेकर उड़ान भरने तक समान अवसर प्रदान करे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।

0: सिनेमा उसकी कहानियाँ और कहानियों से जुड़े किरदार बेशक एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन होते एक ही सिक्के के दो पहलू ही हैं।
1: क्योंकि दोस्तों, बिना किसी कहानी के कोई किरदार नहीं बन सकता, और ना ही सिनेमाई पर्दों के वो किरदार हमारे बीच आ सकते हैं।
0: तो सिनेमा, उससे जुड़े कलाकार और हमारे आपके प्यारे अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में जानना भी तो बनता है ना।
1: बिल्कुल, और इसीलिए सीने दर्पण में उनकी बातें होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म वर्ष 1946 में पेशावर के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था।
1: एक साल बाद 1947 में उनका परिवार बंबई आकर बस गया।
0: 5 दशक लंबे करियर में विनोद खन्ना ने 100 से ज्यादा फिल्में की।
1: बिल्कुल, और उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति इतनी बड़ी थी कि कई बार मुख्य किरदार ना होते हुए भी वे अपनी ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते थे।
0: वर्ष 1968 में सुनील दत्त ने कॉलेज में पढ़ने वाले युवा विनोद में छिपे अभिनेता को पहचाना और मन के मीत फिल्म के लिए चुन लिया।
1: बिल्कुल, और ये विनोद खन्ना की पहली फिल्म थी, और पहली ही फिल्म से उन्हें खलनायक के रूप में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी।
0: दोस्तों, विनोद खन्ना उन चुनिंदा अभिनेताओं में थे जिन्हें नायक और खलनायक दोनों के रूप में एक समान मोहब्बत मिली।
1: बिल्कुल, उन

0: एक ऐसे कलाकार थे जिनके हिस्से उस दौर की सबसे ज्यादा मल्टी स्टार फिल्में आईं।
1: 70-80 के दशक में आने वाली कुछ बड़ी फिल्में जैसे मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, शंकर, शंभू, दयावान, सभी बेहद चमकीले सितारे से भरी हुई थी, पर याद इन्हें विनोद खन्ना की फिल्मों से ही किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इन सब फिल्मों की जो एक बात थी, वो जो जोड़ती है, वो ये थी कि इन फिल्मों में विनोद खन्ना के सारे किरदारों ने दोस्ती की मिसालें खड़ी की।
1: 1981 में आई फिल्म कुर्बानी में विनोद खन्ना की जोड़ी जितनी जीनत अमान के साथ सराही गई, उतनी ही फिरोज खान के साथ भी।
0: बिल्कुल, और फिरोज खान के साथ तो उनकी जोड़ी उस समय का सक्सेस फॉर्मूला मान ली गई थी।
1: 70 के उतरते दशक में उनके जीवन में एक साथ दो बड़े सदमे आए, उनके चचेरे भाई और फिर माँ को खो देने के दोहरे दुख ने उन्हें तोड़ दिया, और वे फिल्मों को अलविदा कह अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अमेरिका चले गए।
0: वहाँ 8 साल तक उन्होंने ओशो के आश्रम में सेवा की। जब वे भारत लौटे तो ना उनके पास पैसे थे ना घर।
1: उन्होंने फिर एक बार फिल्मों में काम किया और ऑडियंस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। विनोद खन्ना ने एक जीवन में कई जीवन जिए दोस्तों।
0: बिल्कुल, और फिल्मों से उनका रुख राजनीति की ओर हुआ, और साल 1998 में वे गुरदासपुर से सांसद हुए और आगे जाकर वाजपेयी सरकार में मंत्री भी।
1: साल 2017 में ये सितारा हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया। उनके जाने के बाद उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, विनोद खन्ना का जीवन केवल उन्हें सुपर स्टारडम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बेहद आकर्षक और उतार चढ़ाव भरी दास्तां है।
0: बिल्कुल, और विनोद खन्ना अपने पीछे अपनी जो कभी ना हार मानने के जज्बे की कहानी छोड़ गए, वो अपने आप में एक प्रेरणा है।

0: तो चलिए दोस्तों, उठा लीजिए अपनी पेन और खोल लीजिए अपनी डायरी, क्योंकि कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है यूथ डायरी के शब्दों को नोट करने का, जिसमें हमारा आज
1: आज
0: का
1: का
0: शब्द है शिवानी। आप बताइए।
1: बिल्कुल आस्था, आपने कह दिया तो मैं बताऊंगी
0: बिल्कुल
1: दोस्तों। यूथ डायरी में आज का हिंदी का शब्द है परिकल्पना।

0: इसका अर्थ होता है किसी बात के बारे में पहले से किया गया अनुमान, कल्पना या संभावित विचार। और अगर बात करें इसके पर्यायवाची शब्द की तो वो है कल्पना, अनुमान, मान्यता, अभिकल्पना। और अगर परिकल्पना शब्द को वाक्य में प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि पौधे की वृद्धि पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लेखक ने अपनी कहानी की परिकल्पना एक काल्पनिक नगर पर आधारित की।
1: और अब बारी है आज के इंग्लिश वर्ड की, जो है सर्कमस्पेक्ट। अब हम आपको इसकी स्पेलिंग बता देते हैं, वो है CIRCUMSPECT। इसका मतलब होता है कि केयरफुल एंड थिंकिंग बिफोर डूइंग और सेइंग समथिंग। और इसके सिनोनिम्स हैं केयरफुल, वाइज, अलर्ट और थॉटफुल। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि है बी सर्कमस्पेक्ट व्हेन यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और वो है ही वॉज सर्कमस्पेक्ट बिफोर मेकिंग अ बिग डिसीजन।
0: दोस्तों, यू डायरी के शब्द नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये हमें आगे काम ही आते हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज के सवाल का,
1: और वो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन मनाया जाता है।
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुनिएगा।
1: बिल्कुल, और वो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन मनाया जाता है।
0: और अब बारी है जानने की कल के सवाल और उसके विनर्स की। तो हमने आपसे कल पूछा था कि शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जिसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। और जिन लोगों ने ये सही जवाब दिया है उनके नाम है चंदा चंदौली से, रोहित अस्थाना वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से। इसी के साथ हैं खरगोन।

0: और इसी के साथ फिर से बताते हैं आपको आज का सवाल।
1: इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन मनाया जाता है?
0: तो अब जल्दी से हमारे आज के पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। जाइए हमारी इंस्टा आईडी youthAIR वाराणसी पर, या फिर आप अपना जवाब हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youthAIRVNS@gmail.com। और जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है दोस्तों, आगे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले ये गीत।

0: अच्छा शिवानी, मैं ना क्या सोच रही थी कि क्यों ना सैर पे निकला जाए।
1: अरे अरे आस्था, एक मिनट, तुम प्रोग्राम के बीच में हो, ये अचानक कहाँ सैर पे निकलने की बात करने लगी भाई?
0: शिवानी तुम तो घबराई गई, रिलैक्स करो। मैं तो इतिहास के पन्नों में एक छोटी सी सैर की बात कर रही थी।
1: ओ अच्छा, मैं भी सोचूं ये क्या कहने लगी तुम। तो वहां अकेले क्यों जाना, हम सब भी साथ चलते हैं ना।
0: अरे एकदम, तो आइए बताते हैं आपको क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन इतिहास के पन्नों में। सन 1928 में लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था।
1: दोस्तों आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1886 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बना था।
0: बिल्कुल। और सन 2004 में रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी।
1: इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि वर्ष 2005 में महेश भूपति और मेरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था।
0: बिल्कुल। और दोस्तों इसके साथ ही वक्त हो चला है रोजगार सूचना का, और आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो खास वैकेंसी है।
1: दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC ने प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 295 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री और PET 2025 का स्कोर कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और ऑफिशियल वेबसाइट upssc.government.in पर 16 जून से आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 तय की गई है। इस दौरान अभ्यर्थी कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने की फीस सभी वर्गों के लिए सिर्फ ₹25 ही है।
1: तो ये अच्छा मौका है।
0: बिल्कुल। मैं कह रही थी कि फ्यूचर की टेंशन में अपने प्रेजेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलो इसी बात पे सुना देते हैं ये सॉन्ग।
1: नहीं, सॉन्ग तो अभी हमने सुन लिया, अभी बातें करते हैं।
0: अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
1: आस्था वैसे तुम प्रोग्राम में हो नहीं, किस बारे में सोच रही हो?
0: देख रही हो ना तुम, मैं कहाँ ही खोई हुई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। देखो शिवानी, मैं ना सोच रही थी कि अगर हवा बोल पाती तो शायद हमसे कुछ ऐसा कहती।
1: क्या और क्या कहती?
0: मैं तो हर पल तुम्हें जिंदगी देती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या देते हो? धुआं, धूल और शोर। थोड़ा अजीब लगा ना?
1: हाँ लगा तो, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम क्या कहना चाह रही हो। यही सच भी है, हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि हम जिस हवा पर अपनी जिंदगी टिका रहे हैं उसकी हालत कैसी है।
0: और कुछ जगहों पर आज भी ताजी हवा भले मिल जाएगी, लेकिन कई शहरों में सुबह की शुरुआत ही धुएं और धूल से होती है। और सबसे दुख की बात यह है कि धीरे धीरे हम इसे नॉर्मलाइज करने लगे हैं।
1: हाँ अब जैसे गाड़ी से निकलता धुआं, कूड़ा जलाना, पेड़ों की कटाई, ये सब मिलकर हमारी हवा को बीमार बना रहे हैं। और जब हवा बीमार होती है तो इंसान भी ज्यादा दिन स्वस्थ तो नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि हम सब इस कहानी का अंत बदल सकते हैं।

0: बिल्कुल बदल सकते हैं कुछ छोटी आदतों से, जैसे कभी छोटी दूरी पैदल चलकर देखिए, एक दिन बिना वजह गाड़ी ना निकाल कर देखिए।
1: बिल्कुल, या फिर अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए।
0: याद रखिए, धरती को हमारी जरूरत नहीं है, हमें धरती की जरूरत है।
1: बिल्कुल, इसलिए हवा को सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसकी हिफाजत भी कीजिए और वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान भी दीजिए।
0: चलते चलते बस एक बात कहूंगी दोस्तों, जब अगली बार गहरी सांस लें तो सोचिए, ये हवा सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी है।
1: बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर अपनी हवा को फिर से साफ बनाएंगे, लेते हैं अब आज के लिए आपसे विदा। कल फिर से इसी समय पर आपसे वापस मिलने का वादा करते हुए।
0: आज विदा है पर अंत नहीं, कहानी हमारी और आपकी अभी खत्म नहीं। इसी संदेश के साथ आज आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम में मुझे यानी शिवानी गुप्ता को।
1: और मुझे यानी कि आस्था पांडे को
0: अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जो रिले होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सवेरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आ बालतल राय से शुरू हो गई। पूरा देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करी है। ये बीचे तीर्थयात्रियों के लिखल एगो चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालाना अमरनाथ यात्रा के देश को आध्यात्मिक रिवाज आ सांस्कृतिक एकता में एगो शाश्वत अध्याय बतौने।
1: पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। समाचार कक्ष से प्रेम हिंद गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 9वां उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल।

0: ने इस मौका पर मुख्यमंत्री कहने की या महोत्सव खाली प्रदेश से नहीं बल्कि देश के किसानों में भरे अपने उत्पादन के प्रदर्शनी का एक मजबूत मंच हो।
1: मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सके, एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा, इस पे काम करने की आवश्यकता है। AI, ड्रोन, सेटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर। जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है जो आज की आवश्यकता है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री अजय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के 464 करोड़ रुपया से बेसी की लागत से बनल नया परिसरों का लोकार्पण कैने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों का समीक्षा कैने। वहाँ के आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रन आ हाफवे होम में रहे वाले संवासी लोगों के भरण पोषण बदे अनुदान राशि 2000 रुपया से बढ़ा के 3000 रुपया हर महीना कैले के फैसला कैले हैं। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदिर और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: एटा जिला के बागवाला थाना क्षेत्र में किलार मऊ गांव के लगे काली देर रात एक सड़क दुर्घटना में 5 जने की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। हमारे एटा प्रतिनिधि बताने की फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रहा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एक बस तकनीकी खराबी के नाते सड़क के किनारे खड़ा रहल। यही दौरान पाछे से आ रहा एगो तेज रफ्तार कैंटर बस के ठोकर मार दहलस। ए टक्कर के बाद एगो और गाड़ी दुर्घटना के चपेट में आ गई। एटा का DM अरविंद सिंह बतौना की घाही लोगों के समुचित इलाज के इंतजाम कैल गैल बा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार ऐप के जरिए आधार में ईमेल के सोझे अपडेट का सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करौले हो। ये सुविधा 1 जुलाई से शुरू होके 6 महीना खातिर लागू बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे पंडित जसराज का गायन। खेल पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:00, जिसमें आज आप क्रमशः दो भेंट वार्ता सुन सकेंगे। पहली होगी बास्केटबॉल खेल एक जानकारी, जिसमें संदीप यादव से बातचीत की है चंदन सिंह ने। दूसरा विषय है खेलों में योग का महत्व, इसमें मनीष कुमार पांडे से बातचीत करेंगे चंदन सिंह।

गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन का समय रहेगा रात 9:30। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी पूजा बसाक। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत होगा शाम 6:30 पर, जिसमें अनुभव खेती में सेगमेंट के अंतर्गत इंद्रसेन सिंह और राजेश नारायण सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही अमलेश कुमार पांडे के गाए लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, और अब कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में विदुषी एन राजम का वायलिन वादन सुनिएगा कल सुबह 7:31 पर, और डॉ राकेश कुमार का बांसुरी वादन दिन में 12:45 पर। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मिर्ची की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना होगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विवेक सिंह।

0: श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनेगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7 बजे और मधुरिमा 8:45 पर। फरमाइशें फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश सुनिएगा दिन में 11 बजे। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। ग्रामीण महिलाओं के लिए अंगनैया कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर, जिसमें ऋतुचर्या और दिनचर्या का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर मंगला गौरी और अर्चना गोस्वामी की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही होगा गीत संगीत। बच्चों के लिए नन्ही दुनिया कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर, जिसमें सेगमेंट होंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, जिसमें जुलाई माह में किए जाने वाले सामयिक कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही वीरेंद्र कुमार चौबे का गाया लोकगीत भी सुना जा सकेगा। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 और दोपहर 1:45 पर भी सुन सकेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह की वार्ता। विषय होगा स्वामी विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद, वसुधैव कुटुंबकम। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनहर उदास और गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत। विवेकानंद का वैश्विक राष्ट्रवाद, वसुधैव कुटुंबकम। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनहर उदास और गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के

0: विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। असद भोपाली का लिखा हुआ गीत था और राम लक्ष्मण ने तर्ज बनाई थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिंधु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहूताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्यां आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरंतर पोषकत्वात् सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मंत्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यत्

0: आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीयतन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्साकार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीयसेनाक्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सासेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95,500+ संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तरप्रदेश बिहार आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजेस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: हो मोहन भैया, क्या हाल चाल है? खेती किसानी का हो?
1: तो हूँ के राम राम दीना भैया। खेती किसानी का हाल चाल देखा किसान भाई लोग जो है ना कि जोर शोर से अब देखा धान रोपे बदे एकदम लगल हुआ। आ दऊ का देखा कोनो ठीक ना बा, तनी मनी बरस के फिर आजाद बना। आज देखा लोग सोचत हुआ कि खूब दऊ ना खूब मजे का जो है ना कि पानी दें ताकि वो नहीं के पानी से जो है ना कि पूरा रोपनियो हो जाए।
0: एकदम भैया, मोहन भैया बात देखा बड़ी निमन का कहला है।
1: हाँ
0: जितना चालाक किसान हो वो देखा भाई अपन खेत उत बनवा लेना, खेत बनवा के जगरे ट्यूबवेल का साधन बा, जगरे पानी का साधन बा, वो धीरे धीरे धान का रोपाई जौन हो करत बा।
1: अब भैया केहू ट्यूबवेल के सहारे बा, केहू पंपिंग सेट के सहारे बा, केहू नहर के सहारे बा, जेकर जौन साधन बैठा था वो सब लोग अपन अपन देखा काम शुरू कर देले हुआ रोपनी का। आ देखा कुछ लोग ऐसनो किसान हुआ ना जेकर अभी बीया न तैयार है, तो उन्हें लोग जानला वो कैसन किसान हुआ, वो देखा बहुत लापरवाह किसान मानल जाना।
0: देखा लापरवाही हम तो कहे भी है किसान भाई लोगन से कि खेती किसानी में अगर लापरवाही करब
1: हाँ
0: तो आमदनी बहुत पीछे चल जाए।
1: अब भैया खेती किसानी ना कौनो जिंदगी के कौनो जो ना हिस्सा होखे ना, जहाँ भी लापरवाही करवा ना तो वहाँ जो ना कि तोके देखा निराशा मिली। कहल गया कि सावधानी हटी या दुर्घटना
0: घटी तो
1: घटी।
0: मोहन भैया देखा अब धीरे धीरे ना, अब
1: हाँ
0: बरसात बुनी के भी देखा समय आवत हो है। अब पेड़ पालो भी जोन हो पानी मांगत हुआ का कहत हुआ।
1: देखा भैया समय से हर चीज जो ना कि ठीक होला। अब देखा ये पानी का मौसम होता, पानी तो पड़बे करी। आ किसान भाई लोगों के जोहता हुआ कि कितना जल्दी पानी पड़ जाओ कि कुल रोपनी सोपनी के काम शुरू हो जाए। लोग खेत बनाए के जोहत बनाया, कुछ लोग तो देखा काम शुरू भी कर दिले
0: शुरू भी कर देने हो।
1: रोपनी करा लगल ना जो ना। लेकिन एक हमने कि देखा रोपनी आ जो खेती किसानी के काम हुआ उस सब तक देखा जरूरी है बाय। लेकिन संगे संगे ये कहम ना कि पर्यावरण का भी हम उनके ध्यान रखे के चाहिए कि पर्यावरण ना में खराब हो पावे। आ देखा
0: एकदम
1: बहुत बार देखत हुआ कि ये घरी किसान भाई लोग जो है ना कि अंधाधुन जो है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करत बाड़े खेती में जो है, उसे देखा जो है कि फसल जो पैदा होते वो तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है बाय। मिट्टी भी जो है कि जो है ना मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
0: देखा भाई मोहन भैया बात जब पर्यावरण का कहला है ना, तो आजकल जवन हो पर्यावरण में वन का कटाई इतना तेज होता भैया, ओकरे बाद जोनी बहाव जैसे कि देखा अब कुछ दिन में बारिश हो वाला हो, मिट्टी का जोन बहाव हो जाई, मिट्टी का बहाव होले की वजह से भी पर्यावरण जाए दूषित होला।
1: देखा यही तले कहल है ना कि देखा जोन पर्यावरण हुआ ओकर संरक्षण करवा ना, तब्बे जो ना कि हमारे जो खेती किसानी के काम है तब्बे वो दुरुस्त हो पाई। आ
0: दुरुस्त हो
1: जोन
0: पाई।
1: कला है ना कि जो ना कि मिट्टी बह जाते ओकरे लिए देखा जरूरी है ना कि फसल का जो ना कि प्रबंधन करे जो ना। आ ओकरे संगे संगे जो ना कि जोन कृषि वानिकी हुआ कि खेती तो करत हुआ लेकिन आरी आरी जो ना मेढ़वन पर जो ना कि ऊपर पेड़ भी लगा दा
0: पेड़ लगा दे ताकि देखा एकदम उपाय एकदम सही बताइला
1: बनले
0: हो।
1: रहे एकदम माटी के बहे न दे कहीं समझला। तो ई भी काम जो ना कि किसान भाई लोग करें तो जैसे कि अपन खेती किसानी भी अच्छा हुई, मिट्टी भी ना बही, आकर जो कृषि के जो वानिकी है वो बनल रही।
0: मोहन भैया पेड़ तो बहुत कम लोग लगावलन, जैसे देखा जे गवही में बा साइड साइड जो न पेड़ बड़ा कम लगावलन। आजकल जो पतलू एखिया वाला कासा
1: हाँ
0: जो के बोलल एक ठे चरी हो गल साइड साइड अगर ओके भी लगा दे किसान भाई लोग तो मट्टी के जौन है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ बनावेला।
1: हाँ ये तो सही बात कला है। देखा यो कहम न कि जो न कि फसल जोन चक्र होला ना फसल चक्र भी किसान भाई लोग के अपनावे के चाहिए। आ ऐसे कहा कि एक तो जो न कि फसल का जोन पैदावार होले वो बढ़िया होले या ज़्यादा होले,
0: ज्यादा
1: आ
0: हो ले।
1: दूसर बात यह है कि जोन मिट्टी होले ना ओकर भी स्वास्थ्य जो ना ओकर भी स्वास्थ्य बढ़िया हो जाला। जैसे तू बीमार होला तो जाला डॉक्टर के है ना,
0: कहे नहीं।
1: वही तरह देखा मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब होला। आ अच्छा भी होला खराब भी होला, एकर भी देखा लोग समय समय पर जांच करावत रहने कि हमारे खेत के मिट्टी के स्वास्थ्य कैसन है। अगर स्वास्थ्य बढ़िया रही तो पैदावार बढ़िया रही, आ स्वास्थ्य खराब रही अब तो ही बीमार हो जीबा तो दौड़ाओ करी तो दौड़बा तो कहबा कि बीमार रही। तो यही तरह से देखा भैया मिट्टी हुआ आ खेती अगर करल चाहत हुआ पैदावार लेवल चाहत हुआ तो ओकरे भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे के पड़ी समझला ना। तो और देखा ये बताई कि दीना भैया कि जोन अपन खेती किसानी के काम है ना ऊपर

0: भी जो है कि हर आदमी की ये तरीके से करें कि पर्यावरण के भी नुकसान ना हो खे आ मिट्टी के भी ना हो खे आ मनई के भी ना हो खे।
1: मोहन भैया देखा बात एकदम फरीश कला भैया। पहले मोहन भैया जब हमने छोटा छोटा रहल जा तो
0: हाँ
1: देखल जा जब खेत जोता तो मार उज्जर उज्जर बकुला बैठ के कीड़ा मकोड़ा बिनो। अब
0: हाँ
1: भाई पहले का समय जो रहल कछुआ
0: हाँ
1: किसानन का मामा जी के कहल जाला। पहले कछुआ बहुत दिखा मोहन
0: अरे
1: भैया।
0: भैया कछुआ केचुआ।
1: केचुआ वो है कछुआ
0: हाँ केचुआ केचुआ।
1: केचुआ के बोलल ना। हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ तो वो बहुत देखा।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन रासायनिक कितना आदमी झोंक देना किसान भाई लोग ओकरी वजह से जवन हाँ मिट्टी भी प्रभाव पड़े थो मिट्टी भी दूषित होत हो। और जब मिट्टी दूषित होता तो जवन उनमें से फल फूल सब्जी निकलत हो वो दूषित होत हो।
0: अब ये कहला ना कि देखा मिट्टी के संगे संगे जो है ना कि जो पानी जो जमीनी से मन निकाली ले जाए पी ले जाए वो दूषित होता।
1: काहे नहीं।
0: देखा जितना को रासायनिक खाद मन डालते थे सब खेतों में जाता ना खेतों में जाता खेते के माध्यम से नीचे चल जाता।
1: कितना बढ़िया बात कहला। अब देखा पहले के जो कुआं रहे ओके उदाहरण पे समझा। पहले के जो कुआं रहल कुआं से आदमी पानी निकाल के पिए और वह पानी पी ले दिन भर एकदम स्वस्थ। हाँ
0: हाँ एकदम सही बात कह
1: अब
0: रहा।
1: देखा हैंडपम्प का भी पानी निकाल के आदमी एकदम परेशान हुआ। तो कहीं ना कहीं भैया ना मोहन भैया पर्यावरण के में जो है संकट दिन पर दिन बढ़ल जाता है।
0: तो एकर देखा संकट अगर बढ़ा था तो एकर सुधार आ एकर समाधान किए करिए हम आने न करल
1: काहे
0: जाइए
1: नहीं हो।
0: तो हम हन देखा करी जाए संगे संगे जी अगल बगल खेती किसानी करत है ना गांव घरे में अपने गांव में बगल वाले गांव के लोग जे भी मिले उसे ये बात कहे कि देखा जो ना कि कुछ लोग होने देखा जोन फसल का अवशेष होला ना जेके पराली कहल जाला
1: पराली कहल जाला।
0: ओके देखा जला देवे ना ओके जलावे के जरूरत ना है ओके देखा हरी खाद बना दे।
1: भाई ओके थोड़ा सा मट्टी देखा जो ना
0: हाँ
1: खोद के अब ओके दबा दे। अब कुछ दिन में जब निकलबा ना तो एकदम बढ़िया खाद बन जाले।
0: ओकर कंपोस्ट खाद बन जाई ना
1: कंपोस्ट खाद बन जाले।
0: ओके दबा देबा तो जो ने कंपोस्ट खाद बन जाई ओसे ओके देखा जरा देबा तो मैं देखा बहुत छोटा छोटा बहुत खेती में जो ना ऐसा जीव जंतु होना जो उपजाऊ भी होना
1: उपजाऊ भी
0: आ खेते
1: होना।
0: के जो पैदावार बढ़ाओ में सहायक होना तो ऊ सब जो ना कि उसमें देखा जल के मर जाना तो ई सब भी काम ना करे के चाहिए आ ऐसे जो ना कि अपने नुकसान हुआ
1: कहे नहीं।
0: तो ये सबसे बचे के जरूरत है। आज जितना हमन के पर्यावरण सुरक्षित रही ना जितना हमन ओकर संरक्षण करल जी उतना जो है कि देखा खेती किसानी भी बढ़िया हुई आ हमन का जो स्वास्थ्य ना ओहो बढ़िया रही आ जब स्वस्थ रह जी तब ना खेती किसानी करल जाई तो ई तो हम देखा बात हो गई जो ना
1: हाँ
0: तो ई तो हमन के बात रले लेकिन ई बतावा कि अब का सुनवावत हुआ जो ना आज कुछ कार्यक्रम में आऊ रहा।
1: हाँ देखा भाई आज है अनुभव खेती में जो ना
0: हाँ
1: इंद्रसेन सिंह भैया और राजेश नारायण का ही बात कही हो। हम लोग को भी सुनल जाए किसान भाई लोगों की भी सुनवा दिल जाए।
0: सुनवा दे भैया।
1: सुनवा दे।
2: देखा आज हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में आप अनुभवी किसान हों इंद्रसेन सिंह ग्राम सोहनी तहसील केलाकत जिला जौनपुर से आप आयल हों तो हमारे आज पंचायती में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रसेन भैया आप ये बतावें कि आप खेती करीला आप अनुभवी किसान हों जगह जगह सेमिनार में भी आप जावें
1: हाँ
2: और
1: भैया
2: आपके सरकार द्वारा पुरस्कृत भी आप हों तो हमारे किसान भैया लोग के ई आप बतावें अपन अनुभव साझा करें कि जायद में आप कौन कौन फसल कैले रहें ओकर का आपके मुनाफा मिलल रहे और भाई अब तो देखें खरीफ के खेती के किसान भैया लोग हमार तैयारी कैले हुए तो आप कौने विधि से बढ़िया से तैयारी करें तनि किसान भैया लोग के आप अपन अनुभव बढ़िया से साझा करें ताकि वो लोग भी अपन विकास के राह पर चल सकें।
3: किसान भैया राम राम। देखा किसान भैया हम तो अपन ही अनुभव बतावत ही ला कि एकरे पहले लखा मक्का की खेती कैले रहे हम। मक्का की खेती में जौनो करे कैले के लाभ बहुत होला। मक्का के पहले बात जौनो भैया लखा पशु अगर रखा किसान भैया के पशु तो बहुत अनिवार्य पशु अगर रखबा भैया लखा दूध बढ़िया मिली तो दूध बढ़िया ले बदे भैया जौनो देखा जौनो हरा चारा चाहिए तो मक्का से हमें हरा चारा मिल जाला
2: सही
3: है
2: कहला
3: भैया।
2: भैया।
3: हरा चारा मिल जाला आराम से तो मक्का हमें खाए भी काम दे देला। मक्का का रोटी भी अच्छा होला। मक्का का बाल भैया हमारे यहाँ से 20 रुपया 25 रुपया किलो जो है इस साल बिक गए है। इस साल जो है गर्मी बहुत पड़ल है। हाँ मक्का में थोड़ा सा दिक्कत आ गल है देखा कि

0: सब भैया यही हाइब्रिड मक्का में थोड़ा दिक्कत अबे कराला। अब देखा भैया किसान भैया, हम तो ये कहब देखा समय आ गई लो, देसी मक्का लगाओ बदे के। अब आप अगर देसी मक्का लगीबा भैया लगा, देसी मक्का बहुत बढ़िया होला, एमें प्रोटीन भी ज़्यादा होला, खाए में बढ़िया होला। ए भैया लखाई मैंने हम सुन जाए डॉक्टर लोग बताओ ना भैया कि शुगर भी कम होला देसी मक्का जौनपुरी वाले में। भैया हम देखा जौनपुर से मिलान करीला तो जौनपुर का मक्का तो प्रसिद्ध है भैया।
1: देखा इंद्र सेन भैया, आप तो मान ला ये बहुत बढ़िया बताओ थो, लेकिन हमारे किसान भैया लोग के इहो बता दे कि आप कैसे तैयारी कर ले हम मक्का
0: हाँ
1: लगाओ
0: भैया,
1: बदे।
0: अब हम बतावा थे भैया लखा जौनपुरी मक्का बहुत बढ़िया होला। देखा भैया पहले गर्मी में ओके जोताई के लिए रहे, घास पात कम हो, दू पलाऊ वाले ट्रैक्टर से पलाऊ दो फर बोल रहे, हमने कोई पलाऊ बोली ना, दू फार जी के कहत रही पहले, मने वही फरवास भैया गर्मी में जोताई कई दबा चाप के ना, और बिना भरले एकदम सूखा में जो चला लाऊ, और पूरा खर जो गर्मी भर में सूखा जाला, और जब खर सूखा जे भैया दूब वगैरह कुल खत्म हो जाए तो खर तो हमने बच जाला, पहले खेत का तैयारी उत्तरम हो गई हमार।
1: इंद्रसेन भैया, किसान भैया लोग ये बताओ कि आप एक बिजाई कैसे करना, जैसे छिटकवा विधि से कि आप
0: देखा भैया
1: ओके।
0: देखा मशीन से कि हमने सुपर सीडर से बुआई करवा तब तो
1: अच्छा
0: में ज्यादा बढ़िया रही, बीज भी कम लगी, खाद भी कम आपके लगी, और पहली बात प्लेस में जो हमने दूरी कैला, हमने किसान भैया कैला दूरी, अगर पौधा पौधा भैया जब दूरी रही ना तब पैदावार बढ़िया हुई, बाली बढ़िया लगा ला, और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बाली लगा ले जौनपुरी वाले में।
1: अच्छा भैया, जैसे जायद में आप मक्का के अलावा भी कोनो खेती कैले रहला हाँ?
0: हाँ भैया मक्का के खेती के अलावा हम सब्जी के खेती के लिए रहे,
1: अच्छा
0: सब्जी के खेती भैया बहुत बढ़िया होला, हम सब्जी के खेती देखा जो करेला लौकी भिंडी कोहड़ा टमाटर ये
1: अच्छा
0: सारा के लिए रहे भैया बहुत बढ़िया होला। देखा गर्मी में जो भैया सब जमीन के नीचे होने करीला, ये बदे जमीन के नीचे कर जला, आराम से पानी दिया जला, उनमें जो सड़न पड़ना हो। देखा जो भैया किसान भैया से हम कहब कि थोड़ी बहुत सब्जी तो सबके किसान के लगावे के चाहिए, अपने खेते में अगर सब्जी खेबा तो और बढ़िया रही। देखा भैया उत्तरम दवा ववा बहुत छिड़काव कराला सब, तो ओके मने के जो दिक्कत होले किसान भैया ध्यान दे, मंडी में जो सब्जी जाला तो दवा ववा छिड़काव कम कर जा, अगर जे भी ले जा तो किसान ए बदे भैया लखा जो ना तमाम रोग भैया धरत हो, सब अस्पताल दौड़ो, सब घरे से परेशान हो, पेटी से परेशान हो, कैंसर से हो जाता हो।
1: अच्छा भैया, ये जैसे आप बतौला सब्जी की खेती में आप बहुत नाम बतौला किसान भैया लोग के, अब मक्का के बारे में आप बतेबो के ला, तो इसमें आपके कितना मुनाफा लगभग हो जाला 1 एकड़ में?
0: देखा भैया मुनाफा तो इमें बहुत हो, सबसे ज्यादा मुनाफा मक्का में और सब्जी में हो, अभी चावल गेहूं में उतना मुनाफा भैया ना मिलत।
1: अच्छा
0: हाँ और सब्जी एक ऐसी फसल है जब भी आप किसान भैया कम कहब मार्केट देख के ही जो ओके जो बोए, जैसे अगेती आगे भैया अगर बोले रहा सब्जी तो सका भैया आगे वाली सब्जी जो 25 से 30 रुपया किलो तक ले आराम से बिक गया है। आ देखा भैया इस साल भंटा बहुत ज़्यादा महंगा बिकल हो मार्केट में, लेकिन भैया वही जब भीड़ी में जैसे कहा जला हमने भीड़ बहुत हो गई, सब डिमांड जो कम हो जाए सब्जी का मंडी में, तो ए से वो समय जौने मंडी में ये याद के लिए जैसे ए समय हमारे अगर ध्यान देवल जाए करेला का, हमारे करेला का बिया जमा दिलीला,
1: अच्छा,
0: करेला के भैया का बरसात बदे जमा चुकली, तो
1: खरीफ
0: कुछ
1: खरीफ की
0: खरीफ
1: खेती
0: खरीफ
1: में।
0: का खेती में भैया जी कल खरीफ बोला लीला मने, तो हमने कहला भैया ये बरसात में काम करेला जमा चुकलीला,
1: अच्छा अच्छा
0: हमार पौधा जाम गल, हम कुछ किसान के भी पौधा देला
1: अच्छा
0: फ्री में भैया देला, हम ओके जानो देसी खाद में जानो और मंगौले भैया जानो ओके ट्रे, और ट्रे में बीज जानो डाल के ओके जानो पैदा करीला जमाईला, गर्मी भैया बहुत
1: अच्छा
0: पड़ला।
1: अच्छा वैसे बरसात में आप करेला जब खेती करना खरीफ में फसल में,
0: हाँ भैया
1: तो ये गर्मी के हिसाब से एकर कैसे तैयारी करना, जैसे भाई गर्मी में तो कुछ लोग थल्ला बना बना के अपना रूम करला मचान द्वारा ओके चढ़ावला, आप एक बरसात में कौन विधि से के
0: देखा
1: तैयारी
0: भैया
1: करला?
0: बरसात में भैया जो ना बहुत सावधानी चाहली सब्जी बदे के, पहली बात जो भैया सावधानी किसानन के हम ये कहब कि गर्मी देखा इस साल बहुत पड़ल, अभी लोगों ना सबकर बहुत किसानन का भाई बीज बोआइल ना हो सब्जी का, बारिश लेट भइल है इस साल किसान भैया, हम कहब बारिश भी बहुत कम हो रही, अनुभव मापन आपन अनुभव बताओ थे कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी लोग कहते हैं कि बारिश इस साल कम हुई। देखा भैया बारिश कम तो ओके हमनों के सोचे कोई कि आगे हमने का खेती करी कि हमने का फायदा हो या कम लागत में बढ़िया फायदा हो, तो जब भी
1: अच्छा
0: आप सब्जी हमने बोल जी भैया ना चढ़ावे के चाहिए, बांस से ऊपर बल्ली गाड़ करके चढ़ाए की ही सब्जी पैदा करियन, तो बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा तैयार हुई और ज्यादा फल दे भैया,

0: अच्छा हमने
1: शरीर है।
0: किसान भैया लोग केंद्र सेन भैया यही बताऊं कि जैसे करेला में भी कोनो रोग बियाद लगा ला।
1: हाँ भैया, करेला में भी रोग लगा ला। तो करेला में जो रोग लगा ला भैया, जब आप जमीन पर कैले रही हैं, बारिश में पहले बारिश आई या पानी ज्यादा लग गल, तो बारिश में गल जाला करेला, तो
0: सड़क
1: गल जाला,
0: डाल।
1: सड़ जाला, पत्ती सड़ जाला। और जौन फरलो रहा भैया ना, वो आज देखबा काल जौन तुरंत वो गल जाई, वो भी खराब हो जाला। लेकिन जौन आप चढ़ौले रहे हैं, और थाला भैया जब भी ओकर बनैन ना, ऊंचा देसी खाद वगैरह दे के भैया ना, गोबरे खूब बढ़िया सा ऊंचा दे के बनैन, आ जीप भी चढ़ैन भैया ना, तीन बीज इकट्ठा बोहन थाला में, तीन थे, और
0: अच्छा।
1: तीन थे जौन जब चढ़ी ना, ऐसे जौन एकदम छाता बना के चढ़ा लमनी, जगह छाता बोलल जाला। जब भैया चढ़ी ना, तब बहुत बढ़िया वो फली, और फली
0: अच्छा
1: भैया देखा उसमें पानी भी कम लगी, उसमें रोग भी कम लगा।
0: इंद्रसेन भैया, जैसे अब खरीफ के खेती में धान के भी आप लगौले हों, नर्सरी उसी लगा दिले हों,
1: हाँ भैया,
0: तो कुछ ऐसा विधि आप बतावा जिसे असिंचित क्षेत्र जहाँ बा वहाँ भी किसान भैया लोग धान अपना उपजा सकें।
1: देखा भैया, किसान भैया जौन ना, आप जौन ये ध्यान दें, देखा बारिश कम होता, हमें ये ध्यान देवे कि हमार लागत कम रहो, कैसी हो, हमें लागत तो बचत के भी ध्यान देवे के, और पानी भी हम देखेंगे कि पानी हमारे केन कितना। देखा भैया, जिकरे पास पानी हो ना, वो रोपाई तो आराम से कैली, अब जिकरे पास पानी ना हो ना, तो रोपाई बड़ी समस्या हो जाला।
0: बहुत बहुत
1: तो
0: भैया।
1: ये से भैया, किसान भैया, हम तो जौन कहब कि DSR विधि से, मतलब DSR का मतलब भैया होला किसान भैया ना, से के हमारे पहलवा बैलवा से बोत रहे हो, सीधी बोआई कहल जाए, वह अब समझ जाए DSR विधि कहल जाए,
0: हाँ कुण विधि
1: कूण
0: जो।
1: विधि जेके कहा जा रहा है भैया ना, अब DSR विधि ओके कह लग गए वैज्ञानिक
0: हाँ
1: विधि
0: हाँ
1: से,
0: हाँ तकनीकी के
1: तब
0: हिसाब
1: तकनीकी
0: से।
1: खेती से, तो हमारे हैप्पी सीडर या सुपर सीडर जिकरे पास हो, तो ओसे भैया सीधा बुआई करावल जाइ, उनमें से 5 से 6 किलो पहले बीज लगा ला
0: अच्छा।
1: बीघा में। भैया बीज तो बहुत कम लगा ला, और खाद भी उनमें भैया कम लगी। किसान भैया खाद के अलावा ना, और हमें बचत होला, खाद बची, बीज बची,
0: मजदूरी
1: पानी भी
0: बची,
1: बची,
0: मजदूरी भी
1: रोपाई भी
0: बची।
1: बची, जोताई भी बची, एक बार में कुल तोहार कुल कई नहीं, सीधा एकदम पहली बचत हमारे को हो जाला भैया। जो ये सब महंगाई दिखा, रोपाई के मजदूर ना मिलते हैं गाँव में
0: आपने
1: या
0: कहा कि
1: कहीं ना,
0: मतलब
1: उन
0: मजदूरी में बहुत कम
1: बहुत कम
0: लगेगा।
1: लगी, मजदूर भी ना मिलतन, समस्या हमार हल हो गई पहली मजदूर से। दूसरका भैया बात है, में पैदावार भी बहुत अच्छा होला हो, लेकिन मैं ध्यान देव कही, जब भी बुआई करल जाए, अगर जो मतलब बारिश हो गई ला, खेत नमी हो, तब तक ठीक हो, अगर ना हो भैया ना, तक जोताई सीधा कह के बुआई कह दिली, बुआई कैले के बाद पानी देवल जला, में पानी दे के भैया पेंटा मिथिन आवल एक दवाई घास बदे
0: अच्छा।
1: ध्यान दे जो के छिड़काव कर देवल जला, तो मैं जो 20 से लेके 40-45 दिन तक ले जो घास कम जाम मन लिए
0: ई दवा भैया जब सिंचाई आप कह लेना तब देना कि सिंचाई से
1: भाई।
0: पहले?
1: नहीं भैया, जैसे नमी ना रहत मट्टी में ना, झूरा सीता बुआई हो गई खेते में, ओकरे बाद हमने जब भराई कह देबो के, एक दिना 2 दिना बाद अगर भराई कह दिए, तो इस ओके हमने जो भरले के बाद, तब वो दवाइया मारल जाला, पैरवा सा जाला,
0: अच्छा।
1: तब दवाई मार देवल जाला भैया, तो उसे 25 से 30 से 35 दिन तक ले जो घास कम जामे, तब ले हमार पौधा जाम के 10-15 दिन मजे को हो जाला भैया।
0: अच्छा ये बताओ जैसे भैया, जैसे रोपाई आप कर रहे हैं, आई जौन छिटकवा कुण विधि द्वारा अपन धान के जौन बिजाई करावत हुआ, तो में पैदावार में ज्यादा का अंतर होला कम
1: नहीं भाई,
0: बेसी?
1: पैदावार तो जो करीब करीब जो हम हमरे समझ में आवला कि एकर डग जाला थोड़ी बहुत,
0: अच्छा जौन
1: आ ये
0: कुण।
1: बदे डग जाला, तो इनमें ये सब ध्यान देला पहले, कि पहला दवाई मार देली पेंटामिथिन बास में, फिर जो जहाँ हल्का फुल्का नीचे मोथा ना जात पेंटामिथिन से, या डौरा ना गयल, कभी कभी होला के बाद वाली खर जौन जमला, तो ओके हमने दवाई मार देवल जाला जो है, दवाई मार देवा दोबारा जो तो वो सब खत्म हो जाए, तो हम आने का पौधवा जो ना बहुत बढ़िया होला। हाँ भैया, पैदावार कब बढ़ी, जब वो तई सब बड़ा हो जाए पौधा ना, कहीं 40-45 दिन के, तो ओके करेल का हम जो हेंगा से हेंगवा देला, हेंगवा देबा अगर नमी दे के ओके हेंगवा देवल जला, पौधवा टूट जाला, जब वो टूट जाला कल्ला उमिना वाला बहुत ज्यादा
0: अच्छा
1: गुड़
0: बियाज हमें बहुत बढ़िया।
1: ब्याज बहुत बढ़िया होला। अब किसान भैया कहिए भैया, ये तो पूरा पौधवा हमार तोड़वा देना, एमिन हो ही का, लेकिन
0: अच्छा।
1: भैया ओके हेंगवा के नमी रही, हेंगवा के भी पानी दे दिए, तो पौधा देखा है खड़ा हो जाला। या किसान भैया ये भी ध्यान दे रही, अपन अगर उपाय करौली हुई जौन पौधा पैर से दब जाला, तो उम्मीद नहीं देखे जानो कल भैया दब गल खराब हो गल, आप लेकिन उपिन देख पा ना, उम्मीद और ज्यादा मेनो कल्ला आ जाला।
0: अच्छा भैया, जैसे मान ला असिंचित जगह बा, तो यहाँ

0: धान के जैसे रोपाई आदमी करना तो हमें बीच बीच में दो तीन बार खाद देवें, तो उनमें कैसे आप खाद बीच में दे
1: देखा
0: जैसे।
1: भैया, पहली बात हम यही आप बतावत रहे, आप तो भैया पूछू ले, बड़ा अच्छा बात हमसे हमसे जो ना, देखा किसान भैया जब भी ध्यान देखा बारिश कम हो तो इस समय कम समय वाली जो ना बीज बोए के चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, और कोशिश ये करा कि जो ना 10 दिन के अंदर कुल जो ना
0: ले।
1: बुआई करवा ले, आप अगर सुपर सीडर से करवाओ थे भैया, लेट करवा तो जो ना समय लेट हो जाए, गेहूँ बोए में समय लगी ना, तो ये किसान भैया ध्यान दे कम समय के ही बीज का चॉइस करें। जैसे तमाम है बासमती है, 120 दिन का धान है। अरे भैया पहलवा एक खेत 60 चलत रह लो, हम आने जो 60 अगर मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया हो, है ओकर भी जो बहुत जल्दी पैदावार हो जाए। तो भैया हमें ये भी ध्यान दे कि पानी ना हो तो कम दिन का समय लेव हुई अच्छा पैदावार हुई। देखा भैया
0: पहले
1: जितना
0: अमन के पुरनिया लोग जैसे भैया सेरहा बंकी भी
1: सेरा
0: बोवन।
1: रहे करनी रहे भैया तमाम धान रहे भैया, लिखा पुराना जो जितना धान रहे बहुत अच्छा रहना, और खाएं भैया बहुत भी अच्छा लगत रहना।
0: अच्छा इंद्रसेन भैया, हमरे कृषि जगत पंचायती में आप अइलें आ हमरे किसान भाई लोग के आप इतना बढ़िया अनुभव साझा कइलें, आ आप पे इतना बहुत बड़ा बहुमूल्य समय दहलें चल के आप अइलें, एकरे बरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया, हाँ दीना भैया, ये देखा अनुभव खेती में कार्यक्रम के अंतर्गत देखा, ये इंद्रसेन सिंह भैया से अपने राजेश नारायण जन भैया हुआ ना, वो देखा बतेऊ ना आ कितना फरिया फरिया के बात कही ना कि ये समय जो ना जो फसल जो लगावा वाली है ओमे का का जरूरत है, का का लगौले हुआ, ओमे आवश्यकता कौन कौन चीज है, ओकर निराई गुड़ाई से लेके दवाई तक कुल पूछ करना, तो जानकारी तो देखा बहुत बढ़िया मिल गई किसान भाई लोग के। अब कुछ गीत गौनाई भी करीबा कि मतलब खाली
1: हम देखा
2: बातचीत होई।
1: समझे थे कि कुछ मन मनसायन होवे के चाहिए, किसान भाई लोग भी सोचते हैं कि कुछ होवे के चाहिए मन मनसायन। तो देखा ये अमलेश कुमार पांडे भैया हूँ, छपरैया सुनाओ थोड़ा, सुनल जा
2: सुनवा दा
1: सुनवा दा।

0: मोहन भैया, करेला सपनवा के साकार,
1: हाँ,
0: किसनवा मोर भैया।
1: आई देखा अमलेश कुमार पांडे भैया गावत रहना, एकदम नीमन से गाय के मन हरियर कर देना एकदम अमन का।
0: देखा, जब छपरैया परैया बजे ले ना, तो
1: हाँ
0: किसान भाई भी अगर कुदाल उदाल चलावे ना, एकदम झूम के।
1: आ देखा ये झूमा का मौसम है चला था, आ देखा ये कहा ना कि दीना भैया कि लगे हाथे जो ना कि काल अपने पंचायती में जो कार्यक्रम हुए ओकर भी जानकारी किसान भाई लोग के दे देवल जाए।
0: देखा भैया, खेती की बातें में प्रातः 6:05 पे जो है मिर्चा की खेती कैसे
1: हाँ
0: करा किसान भाई लोग, इस पे जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: आ देखा काल सांझे के 6:30 पर जो कृषि जगत कार्यक्रम होला उसमें देखा बातचीत सुनवाल जाई, जुलाई महीना में कैल जान वाला जो है ना सामयिक कृषि कार्य ये विषय पर डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह से अपने रामकृष्ण मिश्रा भैया जो हुआ
0: हाँ
1: वो देखा बातचीत कैले हुआ। आ देखा ये बहुत नगद के बात कही है कहाँ से कि देखा जुलाई के महीना चला था आ जुलाई माह में कैल जाने वाला जो सामयिक कृषि कार्य है ओपर देखा बात कही है तो किसान भाई लोग के लिए बहुत देखा फायदेमंद ही बातचीत है वो जरूर सुना
0: देखा।
1: होके। आ देखा ये कहब ना कि ये घड़ी देखा बरखा बुन्नी का दिन चला था
0: हाँ
1: आ राती के पानी सुतले में भगवान बरस देते हुआ आ दिने में उठबा तो जो ना कि पानी ना रहा था, लेकिन ओकरे बीच में देखा ध्यान दे वाली बात ये है ना कि देखा खेती किसानी में अगर जात हुआ सवेरे सांझे आ सांझे का जात हुआ तो विशेष रूप से देखा गोजी डंडा लेकर के छाता ओकरे संगे संगे जो ना कि लाइट भी रहा।
0: बहुत जरूरी बात समझेला
1: हाँ
0: किसान भाई लोगन की, शाम के
1: हाँ
0: समय जब भी निकला।
1: हाँ भाई देखा कारण है कि देखा कुल जितना के जीव जंतु हुआ ना वो डंडवे पे आके बैठा रही हैं तो ऐसे बचे के तेन से ठोकर ठटाव चलत रही हैं तो जीव जंतु अपन स्थान पकड़ लिया किसान भाई लोग भी अपने सुरक्षित अपने घरे आ जाइए तो थोड़ी सी सावधानी बरती हैं तो उनकर खेती किसानी जो ना चलत रही तो यही लिए देखा है हम कहब ना कि देखा ये तमन के बातचीत तब फिर आगे भी होत रही लेकिन अब देखा जाए के समय हो गए तो पंचलोक से अमन आज्ञा ले जाए तो
0: तो
1: पंचो
0: पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत।

तुम मेरे हो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत था और तर्ज बनाई थी आनंद मिलिंद ने। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बलमा से। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की हैं। समीर ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बलमा फिल्म का गीत। समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू

0: चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की आधारशिला बने। ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने

लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से

0: परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की एआई कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
2: यूपी का APY स्कीम में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 9,25,00,000 से ज़्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफ़ी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाए प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:31:36 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

शक्ति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कालीचरण से, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना इंद्रजीत सिंह और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे और आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म लैला मजनू से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। शब्द रचना जयदेव की है और लयबद्ध किया है साहिर लुधियानवी ने।

लैला मजनू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जयदेव के बोल थे और साहिर लुधियानवी का संगीत। आइए अब सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की। वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जानी दुश्मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं पूजा बसाक। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनके स्वर में तुलसीदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पूजा बसाक। आइए अब सुनते हैं इनकी आवाज़ में मीराबाई की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पूजा बसा के गाए भजन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। रस माधुरी कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक का गाया हुआ फिल्म आदमी खिलौना है से। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

घर परिवार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे नितिन मुकेश की आवाज़ में, अनजान के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म मृत्युदाता से।

0: अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज को आप सुन रहे थे फिल्म मृत्युदाता में। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म ईश्वर से, आवाजें हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की।
1: तार सप्तक, मंदिर सप्तक,

नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे फिल्म ईश्वर में। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म जीवनधारा का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जीवनधारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोंसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी

0: नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
4: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर

0: बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
2: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर

0: अरी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: parts of Maharashtra today, affecting normal life and disrupting road connectivity in many districts. More from our Mumbai correspondent.
1: Today, several parts of Maharashtra received rainfall, with coastal areas seeing highest amount of rains. Water level rose in rivers of districts of Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and also in Kolhapur. According to IMD, rainfall is expected to intensify in the state from tomorrow till 7th July. Heavy to very heavy rain is likely at several places, while isolated areas over Konkan and the adjoining Ghat regions of Maharashtra may receive extremely heavy rain. Thunderstorms are also likely over parts of Madhya Maharashtra, Marathwada and Vidarbha. The IMD has advised fishermen not to venture into the sea till July 7th due to winds and rough sea conditions. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
0: On to sports. In the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium tomorrow morning. In the Wimbledon Tennis Championships, American Jessica Pegula and Naomi Osaka of Japan have reached the round of 16 in women's singles. Osaka defeated Daria Kasatkina 6-1, 6-3 in just 65 minutes in round of 32 match. Jessica dominated Spain's Buzas Maniero in a 6-1, 6-3 victory. In men's singles, third round of matches, world number one Jannik Sinner is currently facing US player Jensen Brooksby, while Daniil Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another third round fixture, Serbian Novak Djokovic is taking on Arthur Rinconesh of France. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council clears procurement proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफ़िका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल एक ट्रिलियन

0: डॉलर की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को 440 बिलियन डॉलर से तकरीबन 530 बिलियन डॉलर जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन 421 बिलियन डॉलर से तकरीबन 470 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामे नुक्ता नजर पर मबनी है जिसमें हर रियासत जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी पीर के रूस से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं जिन पर 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई दयानतदारी और आला तरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए अवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर अवामी मुबाहसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एलनिनो की वजह से मुल्क के बाज़ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतल्लिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राब्ते में रहने के लिए कहा है ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल डीएसी ने दिफाई अफवाज की जंग की तैयारी को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की कैपिटल हुसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेगी। भारतीय फौज के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई है जो फौज की सफबंदियों को मौसर एंटी यूएवी तहफ्फुज फराहम करेगा। कौंसिल ने मैन पोर्टेबल टैंक मुखालिफ गाइडेड मिजाइल निजाम, दरमियानी दूरी तक जमीन से फजा में वार करने वाले मिजाइल हथियारों के निजाम, बहुत कम दूरी तक वार करने वाले फजाई दिफाई निजाम, टैंकों के लिए फ़ाल तहफुजाती निजाम और जेट बेस्ड कामिकाजे ड्रोन निजाम की खरीदारी को भी मंजूरी दी है। भारतीय बहरिया के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, नेवल शिपबॉर्न अनमैंड एरियल निजाम की खरीदारी और इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन निजाम के लिए जमीनी टेस्टिंग सहूलत के क्याम की मंजूरी दी गई है। उधर भारतीय फजाइया के लिए

0: फिक्स्ड विंग बेस हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीदारी की मंजूरी दी गई है, जो भारतीय फजाइया के लिए मुस्तकिल इंटेलिजेंस, निगरानी, मवासलात और रिमोट सेंसिंग के काम अंजाम देगा। आकाशवाणी दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेटा की एक टीम ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराए ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। जराए ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की हद 3 दिन दी गई है, इसलिए मेटा मुकर्रा वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान जराए ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजारत के हुकाम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से बीएटी, बीएमएस, इपोकायन और लॉसिजी ऐप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जाम के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशंस को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस तहकीकती कौंसिल बीएआरसी को न्यूज और गैर न्यूज दोनों तरह के प्रोग्रामों में उस वक्त तक टेलीविजन रेटिंग्स की इशात को रोकने की हिदायत दी है जब तक कि टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत उसके लाइसेंस की तजदीद नहीं हो जाती। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियू ने आज कोहिमा में खेलों के बुनियादी ढांचे के 16 प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इनमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 4 और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियू ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इंफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। यह फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुजशत हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29%

ज्यादा है, जिनसे कम से कम 2000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि ये आदादोशुमार नामुकम्मल हैं और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तिलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई।

प्यार एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी को मायने देता है। कोई इसे इबादत मानता है, कोई बंदगी, तो कोई अपनी सबसे खूबसूरत कहानी। लेकिन सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी साथ निभाए और वक्त के साथ और गहरा हो जाए।

ज़िंदगी हर किसी को मुस्कुराने की वजह भी देती है और कभी कभी खामोश रहने की वजह भी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते, लेकिन जब वही दर्द सुरों से मिल जाते हैं तो एक खूबसूरत सी गज़ल बन जाती है।

जब शोर थम जाता है तब सन्नाटा बहुत कुछ कहता है, वो दर्द भी सुनाता है जो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो पाता।

0: रूप कुमार राठौर के गाए इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल पत्रिका। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। विषय है बास्केटबॉल खेल एक जानकारी। इसमें संदीप सिंह से बातचीत की है चंदन सिंह ने।
1: श्रोताओं, जब हम रफ्तार, स्फूर्ति और सटीक निशाने वाले खेल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिस खेल का नाम आता है वह है बास्केटबॉल। और आज वर्तमान परिस्थिति में भारत में इस खेल को लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है। तो क्या है बास्केटबॉल खेल और क्या कुछ है इस खेल में, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं संदीप यादव जी। आप एक बास्केटबॉल प्रशिक्षक हैं और वर्तमान में बरेका से आप जुड़े हुए हैं और वहां के बास्केटबॉल टीम के आप प्रशिक्षक भी हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो बास्केटबॉल जो खेल है वो किस तरह का खेल है, उसमें जो ग्राउंड होता है या कोर्ट होता है वो कैसा होता है और कितने उसमें खिलाड़ी होते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: एक्चुअली बास्केट गेम है तो इंडोर गेम है, पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इंडोर ग्राउंड्स बहुत कम हैं और हम लोग सिंथेटिक ग्राउंड पे खेलते हैं और लेदर की बॉल चलती है और एक टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं जिसमें प्रजेंटली 5 खेलते हैं, बाकी चेंज होते रहते हैं। और अभी हमारे देश में बास्केटबॉल का बड़ा अच्छा स्कोप चल रहा है। ये 15x30 का ग्राउंड होता है हमारा, इसकी लंबाई होती है 30 और 15 फीट ऐसे चौड़ाई होती है और ये बड़ा साइंटिफिक गेम है। मतलब बास्केटबॉल टच गेम भी है और नॉन टच भी है। अब जैसे टच करेंगे तो बॉडी टच होगा तो फाउल भी है और बॉडी टच के बिना उसको रोक भी नहीं सकते।
1: अच्छा जी। अच्छा, हम अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे अक्सर लोग बात करते हैं कि क्रिकेट की बात होती है। क्रिकेट में लोग बोलते हैं कि बल्लेबाज होता है, क्रिकेट में गेंदबाज होते हैं, क्षेत्र रक्षक होते हैं। तो जो आपने बताया कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या उन 5 खिलाड़ियों की कुछ भूमिका होती है, जैसे फुटबॉल में डिफेंडर होते हैं या फिर फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं, इस तरह की भी भूमिका उनकी होती है कुछ खिलाड़ियों को, क्या 5 खिलाड़ियों में से किसी को भूमिका दी जाती है?
2: बास्केटबॉल में एक्चुअली में 5 प्लेयर होते हैं, सबको डिफाइंड तो है। कोई पॉइंट गार्ड होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक पावर फॉरवर्ड होता है, एक पोस्ट प्लेयर होता है। ये अकॉर्डिंग टू आपके कैलिबर के हिसाब से होता है। पर जो अब मॉडर्न बास्केटबॉल चल रही है इसके अंदर 5 प्लेयर को 5 चीज़ें करनी पड़ती हैं
1: जी,
2: क्योंकि ये बहुत फास्ट

0: में आप जितना स्पीड से जाएंगे उतना स्पीड से वापस आना है आपको। जहां मिसमैच होगा तो आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा, तो अपोनेंट को इजीली बास्केट करने को मिल जाएगा। पल एक्चुअल बास्केटबॉल गेम अब जो इस टाइम चल रहा है ये एक्चुअली हाइट वाला ही गेम है, क्योंकि ये हाइट बहुत नेसेसरी है।
1: जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मैं, कि जैसा कि आपने बताया कि जो पांचों खिलाड़ी हैं उनको जो है आपस में तालमेल बिठा करके बास्केट किया जाता है, तो हमारे श्रोताओं को जो बास्केटबॉल के जो नियम होते हैं वो बता दें, कैसे ये गेम की शुरुआत होती है और फिर खिलाड़ी को कैसे करके जो है बास्केट करना होता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें।
0: एक्चुअली बास्केटबॉल के अंदर दो पूल में बांटा जाता है, ए और बी। ए
1: जी
0: पूल राइट लेफ्ट हैंड साइड बैठती है, बी पूल राइट हैंड साइड बैठते हैं। उसके बाद बीच में स्टार्ट होते टाइम जंप बॉल होता है हमारा। जंप बॉल के बाद जिसको पोजीशन मिलता है वो ऑफेंस करता है, और वहाँ बास्केट बनाने के बाद फिर वो जो अपोनेंट है वो फिर अटैक करता है। और एक अटैक के अंदर हमें 24 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, उसके अंदर हमें फिनिश करना है अपना अटैम्प्ट।
1: जी अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब कई बार जो है बास्केटबॉल में हम देखते हैं कि खिलाड़ी जो है वो हाथ में लेकर के बॉल को दौड़ता है, या फिर कई बार जो है वो ज़मीन पर पटकता है वो, तो क्या इसके भी कुछ नियम हैं कि कितनी देर वो हाथ में रखे या ज़मीन पर पटके, या फिर वो छका करके किसी खिलाड़ी को फेंक सकता है, इसके भी कुछ नियम हैं क्या कि कहाँ पर वो बॉडी पर टच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
0: एक्चुअली बास्केटबॉल एक ड्रिबल गेम है, आप ड्रिबल कंटिन्यू करते रहेंगे तो
1: ड्रिबल
0: कोई
1: मतलब आप ज़मीन
0: बाउंस
1: पटकते
0: करना,
1: हैं।
0: जमीन पे पटकना है, आप
1: हाँ
0: उसको कंटिन्यू पटकते रहेंगे। अगर आपने एक बार पटका और उसके बाद उसको पिक कर लिया, पकड़ लिया, उसके बाद उसको आप ड्रिबल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप या तो पासिंग कर सकते हैं या शूटिंग कर सकते हैं, और वो भी 5 सेकंड के अंदर। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा आप बॉल रखेंगे तो वॉयलेशन हो जाएगा और अपोनेंट को बॉल दे दी जाएगी।
1: अच्छा, बास्केटबॉल जो खेल है ये कितनी देर का होता है, और इसमें जो खिलाड़ी हैं इस खेल में वो अच्छा करें उसके लिए क्या आवश्यकता होती है?
0: बास्केटबॉल एक्चुअल गेम है 40 मिनट्स का, पर
1: जी
0: इसको हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर 10 मिनट्स का होता है, फिर 2 मिनट्स का ब्रेक होता है, देन फिर 10 मिनट्स का एक क्वार्टर होता है, फिर 10 मिनट का हाफ होता है, फिर उसके बाद हम लोगों का कोर्ट चेंज हो जाता है, फिर 10 मिनट्स, देन 2 मिनट रेस्ट, देन 10 मिनट्स लास्ट में, और वो फिर लास्ट वाला 10 मिनट में डिसाइडेड होता है।
1: जी जैसा कि आपने बताया कि एक गेम जो होता है वो 40 मिनट का होता है, और 10-10 मिनट के अंतराल में इसमें जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, हम लोग जब खेल की बात करते हैं, जैसा मैं क्रिकेट को समझता हूँ मैं, तो इसमें कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियाँ जो है बहुत मायने रखती हैं, मौसम कैसा है, अगर पिच गीली है या फिर बारिश हो जाती है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। बास्केटबॉल में भी आपने बताया कि कोर्ट जो है बदल दिया जाता है, तो क्या बाहरी परिस्थितियों का इस खेल पर प्रभाव पड़ता है कुछ?
0: एक्चुअली बास्केटबॉल गेम है इंडोर गेम, पर
1: जी
0: हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली बाहर खेला जाता है, और जैसे हवा चल रही है या बारिश वारिश हो रही है तो ग्राउंड फ्लोर गीला हो जाता है, तो उस टाइम खेल नहीं पाते हैं, स्किड करते, स्लिप मारते हैं। और बॉल का वेट 600 ग्राम से 650 ग्राम होता है, तो एयर जैसे भी आएगी आपने बॉल फेंकी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, शूटिंग अच्छे से नहीं होगी, पासिंग वगैरह में दिक्कत होगी, तो उसका फ़र्क पड़ता है बहुत बास्केटबॉल।
1: अच्छा, आपने चर्चा के दौरान ये भी बताया कि आधे टाइम के बाद कोर्ट जो है वो बदल दिया जाता है, तो क्या कोर्ट बदलने से भी किसी टीम के जो प्रदर्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है क्या?
0: कई बार पड़ता है, जैसे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, अपने होते हैं, कुछ रिंग्स वगैरह होती हैं अच्छी होती हैं, या कुछ मतलब ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं, इसलिए दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भी इस पे देखें तो आप भी आगे स्कोर करें, मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए उस पर।
1: अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मैं, कि आपने बताया कि वो उनको ड्रिबल करना होता है या फिर 5 सेकंड के अंदर ही अगर उन्होंने दोनों हाथ को टच कर दिया तो बॉल को जो है वो फेंकना होता है, तो चूंकि ये गेम बहुत तेज़ी का गेम है और बहुत तेज़ी से चीज़ों में जो है बदलना पड़ता है, तो इसमें फाउल के भी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो फाउल जो है वो किस किस तरह के होते हैं और किन किन परिस्थितियों में होते हैं, जरा उसके बारे में बताएं।
0: एक्चुअली बास्केटबॉल में फाउल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बॉडी कांटेक्ट भी गेम है,
1: जी
0: और जैसे आप शूटिंग कर रहे हैं, आपको किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया, हाथ पे लगा दिया, तो शूटिंग एक्शन में फाउल है, उस टाइम आपको 2 फ्री थ्रो मिलेंगे।
1: जी
0: और पर्सनल फाउल, जैसे किसी प्लेयर के 5 फाउल हो जाते हैं तो उसको फिर बाहर कर दिया जाता है, फिर वो दोबारा खेल नहीं पाता है। और कुछ ऐसे हैं अनस्पोर्ट्समैन फाउल हैं, जैसे आपसे वो 1/2 इंच या 1 इंच या 1.5-2 फीट आगे है और आपने पीछे से उसको पुश कर दिया, हाथ लगा दिया, तो ये भी फाउल है।
1: जी
0: और बास्केटबॉल गेम में कैसा है कि आपको टच भी करना है और टच नहीं भी करना है, ये आपकी इंटेलिजेंसी पे है कि आप उससे कैसे उसको गार्ड करते हैं।
1: अच्छा, अब बात करते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि बास्केटबॉल गेम जो है वो बहुत ही तेज गेम है, पांच लोगों के बीच में उतने बड़े ग्राउंड में जो है पांच खिलाड़ी इधर से पांच खिलाड़ी उधर से आपस में तालमेल बना करके इस गेम को

0: खेलते हैं, तो ऐसे में उनकी फिजिक, उनका जो है स्वास्थ्य का ठीक रहना बहुत आवश्यक है। उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, वो उनका उनके शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बन सकें, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: एक्चुअली बास्केट बहुत फास्ट गेम है, इसके अंदर आपको इंडोरेंस, स्पीड एंड स्ट्रेंथ सबका ज़रूरत पड़ती है,
0: जी हाँ
1: क्योंकि आप अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लॉन्ग शूट नहीं कर पाएंगे या पावर से इंडोर ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, और हाइट नहीं है तो आपको मतलब कोई भी आपसे हाइट में बड़ा है तो आपको मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उसको खाली हल्का सा एफर्ट करना पड़ेगा, वो आपको चेक कर सकता है,
0: जी
1: और फिजिकल फिटनेस बहुत मायने रखती है बास्केटबॉल के अंदर।
0: जी अच्छा, फिजिकल फिटनेस निसंदेह ही जैसा आपने बताया कि बहुत ही मायने रखती है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी हैं वो इस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें उसके लिए किस किस तरह के व्यायाम वो करें, किस किस तरह के चीज़ों से वो जुड़ें ताकि इस खेल में वो अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकें।
1: देखिए बास्केटबॉल के लिए हमको बहुत ही साइंटिफिक प्रैक्टिस, स्पीड वर्क, एजिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सब करनी पड़ती है, और इनका सबका सिस्टम है। एक आपको अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ भी करनी है, स्पीड भी करनी है, इंडोरेंस भी करना है और मोबिलिटी भी आनी है,
0: जी
1: जिससे कि आप एक एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए आदमी की, फ्लेक्सिबल आप, क्योंकि बहुत मूवेबल गेम है बास्केटबॉल।
0: अच्छा, जिस तरह की ये गेम है इसमें जितना मुझे समझ में आया कि आपके शरीर का वजन भी मायने रखता है इस गेम के, आपके आपके हाइट के हिसाब से, और जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो है किसी की लंबाई बहुत मायने रख जाती है ताकि वो अच्छे से इस गेम को खेल सकें, तो क्या ये संभव है कि जिनकी हाइट एक भारत में अगर नॉर्मल हाइट 5 दशमलव या 5 फीट 8 इंच या 9 इंच है किसी की हाइट, तो वो इस गेम को खेलें और इसमें वो कुछ ऐसा कर सकें? कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं भी क्या जिनकी हाइट अच्छी नहीं भी है फिर भी वो खेलते हैं?
1: हाँ डेफिनेटली, इस गेम में ऐसा नहीं है कि हाइट ही खेलते हैं, शॉर्ट हाइट भी खेलते हैं, पर
0: जी
1: यह है
0: हाँ
1: आपका टारगेट पॉजिटिव होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बहुत खेल रहे हैं लोग बाग अभी भी, इंडिया में खेलते हैं और बाहर में भी खेलते हैं बहुत, पर यह है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा एक्स्ट्रा।
0: जी मैं यहाँ पे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस खेल को लेकर के खिलाड़ियों का खान पान कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: देखिए इसके लिए हमें तो रिच डाइट लेनी पड़ेगी,
0: जी
1: और बहुत नपातुला आपका जीवन शैली होना चाहिए, मतलब टाइम से आपको ब्रेकफास्ट है, प्रोटीन लेना है, और स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको बहुत चीज़ें हैं आजकल मार्केट में, बहुत चीज़ें आ गई हैं, सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, पर बिना कोच और बिना अपने डॉक्टर के सलाह ये चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का एक लाइफ बहुत सीमित होती है। अगर आपने साल भर मेहनत की और आपने कुछ गलत प्रोटीन ले लिया, कुछ और ले लिया, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स आपके पूरे बॉडी पे जाता है और आपका पूरा साल ख़राब हो जाता है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बास्केटबॉल प्लेयर को अपना,
0: जी
1: और हाइट इन इंचेस, वेट इन केजी, ये रेशियो चलता है नॉर्मल लाइफ में। हैवी हो जाएंगे तो आपसे रनिंग नहीं होगी, बहुत चीज़ें दिक्कतें आएंगी, आप स्पीड नहीं आएगी, तो इसलिए ये चीज़ें मायने रखती हैं, आपका फिटनेस बहुत मायने रखता है।
0: अच्छा, जब खिलाड़ियों का चयन होता है कि जब जूनियर लेवल पे खेलते हैं या सीनियर लेवल पे खेलते हैं या फिर जो सीनियर और भी ऊपर लेवल पे खेलते हैं, तो क्या चयन में वेट और हाइट का भी कुछ मापदंड रखा गया है या फिर कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के हिसाब से सिर्फ अच्छा खेल सकता है भले ही उसका वजन ज़्यादा हो, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक्चुअली मोस्टली हम लोग सिलेक्शन जो करते हैं वो स्टैट्स के हिसाब से करते हैं,
0: जी
1: मतलब एक मैच चलता है तो उसके अंदर हर प्लेयर का अपना अपना स्टैट्स होता है, उसमें वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, सब कुछ, पासिंग, शूटिंग, ड्रिबलिंग, मतलब एवरीथिंग देखते हैं। और बॉडी वेट का तो रहता है वो, तो उसको हम फिट भी कर सकते हैं, पर मेन सिलेक्शन हमारा स्टैट्स के ऊपर होता है।
0: अच्छा, इस खेल के बारे में और मैं जानना चाहूँगा कि इस खेल में खिलाड़ी जो है वो जैसा कि आपने बताया कि कोच के अंडर ही वो काम करे, तो एक अच्छा कोच सेलेक्ट करने के लिए एक आम खिलाड़ी जो है जो इस खेल में आगे बढ़ना चाहता है वो क्या कुछ वो कैसे एक अच्छा कोच को वो चुने, इसके बारे में हमारे बताएं।
1: एक्चुअली अभी तो हमारे देश में बहुत साई ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चला रखी है, और
0: जी
1: वो टैलेंट सर्च भी करते हैं बच्चों का, हॉस्टल्स वगैरह खोल रखे हैं उनके लिए, और नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह होती है तो वहाँ से हमारे यहाँ खेलो इंडिया भारत सरकार ने स्कीम चलाई हुई है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं उनको वो लोग सेलेक्ट करते हैं और स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं।
0: तो करियर में इसमें कहाँ तक आदमी खेल सकता है, क्या संभावनाएं हैं उसके लिए, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
1: नहीं हमारे यहाँ तो अभी स्पोर्ट्स में जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है उसने बहुत स्कीम चलाई हुई है, और
0: जी
1: खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है, और कई लोग इंडिया खेल रहे हैं, और उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर NBA में भी ड्राफ्ट हुए हैं। NBA

0: में भी खेल रहे हैं। एनबीए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, ये यूएसए में चलती है और इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। और अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईली पे बास्केटबॉल में वहीं लोग करते हैं। और तो हमारे यहाँ से दो तीन प्लेयर खेले हैं, ड्राफ्ट हुए हैं, सतनाम सिंह वगैरह ऐसे नाम से हैं। और अभी लड़के कुछ बच्चे स्कॉलरशिप पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं
1: जी
0: बाहर, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वो आते हैं यहाँ इंडिया से भी खेलते हैं। अभी इंडिया में फ्यूचर थोड़ा बास्केटबॉल में अच्छा चल रहा है। और एनबीए के साथ हमारा टाई अप भी है, अभी हमारे यहाँ लीग वीग स्टार्ट होने वाली है, ड्राफ्ट हो गया है, बस विद इन मंथ स्टार्ट हो जाएगी लीग वगैरह। तो उससे हमारे बास्केटबॉल को बहुत प्रमोशन मिलेगा,
1: जी
0: जिससे कि छोटे लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है अभी, और
1: जी
0: कर भी रहे हैं हम लोग। तो टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, मिल रहा है टैलेंट अभी बहुत।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप बास्केटबॉल खेल के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: एक्चुअली बास्केटबॉल के लिए बनारस तो बहुत अच्छी जगह है, बनारस से बहुत नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं यहाँ पर। साई का सेंटर भी चलता है यहाँ पर यूपी कॉलेज के अंदर। और बनारस में तीन जगह बास्केटबॉल, चार जगह बास्केटबॉल बहुत अच्छी चलती है, एक यूपी कॉलेज, एक BHU, एक DLW और एक सीगरा स्टेडियम। तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से कम 36 बच्चे एक बार में स्टेट चैंपियनशिप खेलते हैं, जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक जिले के लिए।
1: जी
0: और पल एक ये दुर्भाग्य है कि बनारस में थोड़ा स्कूल लेवल पे चैंपियनशिप वगैरह नहीं होती है, जिससे बच्चों को थोड़ा प्रमोशन मिले, तो
1: जी
0: ये एक थोड़ा यहाँ ड्रॉबैक है। बाकी यूपी में बास्केटबॉल के लिए अच्छा काम हो रहा है और इंडिया में अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो बास्केटबॉल का फ्यूचर अच्छा है, लोगों को खेलना चाहिए, बास्केटबॉल अच्छा गेम है।
1: संदीप यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बास्केटबॉल खेल से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खेल पत्रिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बास्केटबॉल खेल एक जानकारी, इस विषय पर संदीप सिंह से चंदन सिंह की बातचीत। अब आइए सुनते हैं खेलों में योग का महत्व विषय पर मनीष कुमार पांडे से चंदन सिंह की गई बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल पत्रिका के कौरंग के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज का खेल परिदृश्य केवल शारीरिक शक्ति, गति और तकनीक तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह खेल अब अत्याधिक मानसिक दबाव, त्वरित निर्णय, पलक झपकते ही रणनीति बदलने का खेल बन चुका है। और ऐसे में एक खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने मन मस्तिष्क को भी उतना ही बेहतरीन रखे और उतना ही स्वस्थ रखे जितना कि अपने शरीर को। और ऐसे में उसके काम आती है हमारे भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन धरोहर जिसे हम योग कहते हैं। तो खेलों में योग कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मनीष कुमार पांडे जी। आप एक योग प्रशिक्षक हैं और वर्तमान में योग वेलनेस सेंटर स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय भेलूपुर में आप कार्यरत हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो खेल है और योग है वो आपस में कैसे जुड़े हैं?
3: खेल और योग आपस में जुड़े हुए हैं। जो खेल है वो हमारे शारीरिक फिटनेस के लिए है और योग हमारे मानसिक को शांति प्रदान करने के लिए। इसमें चोटों से ही बचाव होती है, जब खिलाड़ी जब खेल खेलते हैं तो विभिन्न प्रकार की चोट लग जाती है। तो जो योग है वो हमें किसी भी चोट से उभरने के लिए हमें जल्दी मदद करता है, हमें चोटों का पता नहीं लगता, जल्दी हमारी रिकवरी हो जाती है और एकाग्रता बनाए रखता है, ताकि हम कोई भी जब खेल खेलते हैं तो हमारा फोकस हमारे खेल पर रहे, हम जिस टारगेट के लिए आए हैं उसे हम अचीव कर सकते हैं। और सहन शक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी जब खेल खेलते हैं तो अनुशासन के साथ हमें सहनशीलता भी अपनाते हुए हमें इसे आगे बढ़ना चाहिए।
1: अच्छा, वर्तमान समय में अगर हम खेलों की बात करें तो जो खेल हैं उसमें मानसिक स्थिति को अभी मजबूत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी खेल की बात करते हैं, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो कमेंटेटर अक्सर बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में जिनके पास भी अभी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, जिनके पास भी अभी प्रेशर में खड़े होने की जिनके पास अभी योग्यता होगी, वही खेल में अभी निखर करके आएगा। तो यहाँ पे योग आवश्यक हो जाता है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि योग जो है वो किस तरह से हमारे मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमारे जो खेल को है वो कैसे निखारता है।
3: योग जब हम करते हैं तो हमें प्राणायाम का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम जब हम करेंगे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, ये हमारे मस्तिष्क को पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन देता है, ये स्ट्रेस से बहुत दूर रखता है, किसी जो रूढ़ विचार

0: आ जाते हैं, बुरे विचार आते हैं, ये सब से एकदम दूर पता है, और आपके बॉडी से एकदम स्ट्रेस को एकदम गायब कर देता है, जो
1: जी
0: ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें हम शामिल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जब हम करेंगे तो हमारा मस्तिष्क के साथ साथ हमारे जो देखने की जो शक्ति है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये और बढ़ जाता है इसमें। और इसमें कुछ हम ओमकार की ध्वनि भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा पूरे बॉडी में ओम की जब ध्वनि होती है तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसको हम जब करते हैं, इसे सामान्य खिलाड़ी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सिर्फ वही करें, सभी इसको कर सकते हैं। सब इसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो कोई भी हम जैसे काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस पे आगे फोकस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि जो तमाम तरह के योग हैं उनसे करने से हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे हमें ये समझने में जो प्रेशर जो सिचुएशन होता है उसमें भी हमारी समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और हम ये समझ पाते हैं कि हमारा दिमाग अभी कहाँ जा रहा है, मुझे खेल पे फोकस करना है या फिर जो है बाहर का वातावरण है उस पर फोकस करना है, और ऐसे में एक खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो जाता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक जो खिलाड़ी है, जो विभिन्न तरह के खिलाड़ी होते हैं, विभिन्न खेल से जुड़े हुए होते हैं, कई खिलाड़ी जो हैं वो प्रतिस्पर्धा से जुड़े होते हैं जिसमें हम एथलेटिक्स बोल देते हैं, वो वजन उठाने का काम करते हैं, तो कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो कहता है कि जब उसका कहीं पे साक्षात्कार होता है तो वो कहता है कि वो योग से भी जुड़ा रहा। तो एक खिलाड़ी के लिए कौन कौन से योग आवश्यक हैं जिसे वो अपने जीवन में उतारे और उसका जो खेल है वो और बेहतर हो।
0: जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें योग को अपने जीवन में तो शामिल करना ही चाहिए, जिसमें
1: जी
0: कुछ खड़े होकर आसन है, जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, और अर्धचक्रासन हो गया, और त्रिकोणासन हो गया,
1: जी
0: इत्यादि जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं ये। इसके बाद हम आते हैं बैठ कर करने वाले जो आसन हैं। बैठ के किए जाने आसन में हम वज्रासन हो गया, मंडूक आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया,
1: जी
0: और पादहस्तासन हो गया। इन सबको हमें अपने योग में शामिल करना चाहिए।
1: जी
0: और बैठ के, जैसे कि पूर्व में अभी बताया हमने कि प्राणायाम का जो भी अभ्यास है वो खड़े होकर नहीं करना है, एकदम आराम से जहाँ हमें अच्छा लगे, किसी प्रकार का जोर दबाव ना रहे, ऐसे बैठ के हम प्राणायाम को हम करेंगे। और सबसे पहले प्राणायाम जब हम करेंगे तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम पे आना है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्राणायाम स्टार्ट कर दिया। उसका जो एक प्रोसीजर है, पहले अपने सांसों पर ध्यान देंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क के बीच में हम देखते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांसों को लंबा लेना है और छोड़ना है, बहुत स्ट्रोक के साथ नहीं। अगर हाल फिलहाल में किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो कुछ प्राणायाम इसमें है, इसे परहेज करना है, जैसे कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि पेट को खींचना होता है और नाक से सांस को बाहर छोड़ना होता है।
1: जी
0: और हाल फिलहाल में अगर कोई सर्जरी हुई हो तो उसमें जो हमारे टांके लगते हैं वो खुलने के का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है, इसलिए इन प्राणायाम को नहीं करना है। अनुलोम विलोम इसमें हम बढ़ा लेंगे, और अनुलोम विलोम को हम जितना बढ़ाएंगे वो अच्छा माना जाता है। इसमें जैसे बताया जाता है कि अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तब हमें जो, जैसे किसी को हल्का चश्मे लगा हुआ है, हल्का दृष्टि बाधित वगैरह रहता है, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जिसके महिलाओं में बहुत जो है बाल टूटने की समस्याएं होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, तो उसमें ये अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है। वो मस्तिष्क को एकदम शांति प्रदान करेगा, आपको बुरे विचार नहीं आएगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं जैसे लोगों में आजकल आम जनमानस में बनी रहती है, वो मेरा शत्रु है, ये इस टाइप का। तो हम प्राणायाम जब हम करेंगे तो हमारे शरीर से जो बुरे विचार हैं वो बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे, और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब प्राणायाम हम करेंगे तो खिलाड़ियों में और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, और हम अपने जो भी हम खेल खेलते हैं उसमें हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
1: ये तो बात होगी कि कौन कौन से योग एक खिलाड़ी को करने चाहिए ताकि उसके शरीर को बाहरी और साथ ही साथ उसके मन मस्तिष्क को जो कि उसके भीतर विराजमान रहता है उसको भी एक सहयोग मिल सके और उसमें भी उसे जो है उसको वो बेहतर कर सके, उसके मजबूती मिल सके और अपने वो खेल में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी हैं वो एक तो योग अभ्यास करते हैं, कई बार मेडिटेशन करते हैं, इसके अलावा उनके अंदर के टॉक्सिक को क्लीन करने के लिए योग में ही जो समाहित हैं अन्य विधियां हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं जो कि खिलाड़ियों में किया जाता है ताकि उनके शरीर को और तंदुरुस्त बनाया जा सके।

0: और उनके खेल को और बेहतर किया जा सके।
1: और बेहतर के लिए हमें अपने शरीर का शोधन करना होता है। शोधन में हम,
0: खिलाड़ियों के शरीर का शोधन किया जाता है।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो हम उसमें जलनेति जो है ये षटकर्म की विधि है। जलनेति में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें थोड़ा हम नमक डाल सकते हैं। जब वो हल्का कुनकुना हो जाए तो एक जलनेति का पॉट आता है, एक दाहिने नाक से हम डालते हैं और दूसरे नाक से वो धीरे धीरे उसका जल के साथ, हमारा जो म्यूकस होता है अंदर कहीं जमा रहता है, कफ जमा रहता है, वो धीरे धीरे वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो हमारा जो ट्रैक है, किसी को बहुत ज़्यादा साइनस की समस्या बनी रहती है, कफ बहुत ज़्यादा बना रहता है, दर्द बहुत बना रहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। खिलाड़ियों के लिए तो माना जाएगा तो एक तरह से बहुत बड़ा शोधन हो जाएगा। उसके बाद एक शंख प्रक्षालन वगैरह है जो हमारे पेट को पूरा जो है क्लियर कर देता है, और हमारे जो आँत में और विभिन्न जगहों जाके जो एक्सेस फैट वगैरह रहता है, जो जमा रहता है, वो उस क्रिया के माध्यम से बाहर आ जाता है। और जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो उसमें सावधानी हमें ये रखनी होती है कि 24 से 48 घंटे तक हमें सिंपल किसी प्रकार का उसमें घी तेल इत्यादि न रहे, हमें सिर्फ खिचड़ी का ही सेवन करना है, अन्य किसी प्रकार का सेवन नहीं। उस दौरान हमें दूध भी नहीं लेना है, इसका हमें ध्यान रखना है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, नमक का कम इस्तेमाल हम करेंगे, और नमक जैसे हम सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा 24 से 48 घंटे का पीरियड बीत जाए तो हम धीरे धीरे फिर फ्रूट्स पे आ जाएंगे, फलों पे आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा अन्न खाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर का जब शोधन होता है तब ये इसको फॉलो हम करते हैं,
0: जी,
1: इस प्रकार से हम करते रहेंगे।
0: तो योग के अलावा ये तमाम शोधन के माध्यम से भी जो है खिलाड़ी अपने शरीर को बेहतर कर सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि शुरू में ही ये बात हुई थी कि आज के जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक हो गया है कि वो योग से जुड़े ताकि हर परिस्थितियों में वो सही निर्णय ले सके। तो एक खिलाड़ी या फिर एक जो भी वर्तमान में खिलाड़ी किसी खेल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बड़े स्तर का भले ही ना हो, एक छोटे स्तर का भी अगर वो खिलाड़ी हो, तो एक योग प्रशिक्षक वो कैसे चुने, इसके लिए वो क्या अपने दिमाग में रखे ताकि उसे एक बेहतर योग प्रशिक्षक मिल सके जिससे उसके खेल में सुधार आ सके।
1: योग प्रशिक्षक कोई भी खिलाड़ी अपने लिए चुने तो सबसे पहले जो भी योग प्रशिक्षक हैं अपने आप को बता रहे हैं कि मैं योग प्रशिक्षक हूँ, उन्होंने कहीं से अध्ययन किया हुआ, उसके बारे में बखूबी जांच पड़ताल कर लें। कुछ लोग होते हैं कि कहीं से योग के विषय में जानकारी नहीं है, विभिन्न जगह टीवी और यूट्यूब में देख देख के वो लोग अपने आप को योग प्रशिक्षकता बना लेते हैं और जो है गलत चीज़ों को बताते हैं, आसनों को प्राणायाम को कुछ गलत बताते, उसका कुछ दुष्प्रभाव जब पड़ता है तब वो शरीर को नुकसान देता है। तो ऐसे लोगों से बचना होता है। उनकी डिग्रियों की जांच कर लें कि ये कहाँ से पढ़े हैं और ये सही में पढ़े हैं कि नहीं है, कि सिर्फ जो है डिग्री हासिल कर ली है इन्होंने। तो
0: जी,
1: ऐसा जो है खिलाड़ियों को या आम जनमानस को भी ऐसा करना चाहिए।
0: निसंदेह ही योग का खेल के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। एक खिलाड़ी के जीवन में योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां पे उस खिलाड़ी को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूती प्रदान करता है और अंततोगत्वा यही मजबूती उस खिलाड़ी के प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। मनीष कुमार पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेलों में योग का महत्व है इस विषय पर इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

खेल पत्रिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खेलों में योग का महत्व विषय पर मनीष कुमार पांडे से चंदन सिंह की बातचीत। इसी के साथ आज का खेल पत्रिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी।

45 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
1: मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित जसराज का गायन, राग है मारवा। आपके साथ तबला संगतकार हैं केदार पंडित और हारमोनियम पर हैं अप्पा जलगांवकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन, राग था मारवा। तबला संगतकार थे केदार पंडित और हारमोनियम पर थे अप्पा जलगांवकर। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमत के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: Prime Minister will also be visiting.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा दे

देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Brooksby, while Jan Lennart Struff of Germany beat Daniel Medvedev. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10:09 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।